ये ठंडी हवा और खुली फिजा जैसे हमें याद दिलाती है कि जीवन को बोझ नहीं एक खूबसूरत सफर की तरह जीना चाहिए। हर सांस में प्रकृति का शुक्रिया और हर कदम में आगे बढ़ने का विश्वास हो तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है।

जब नींद से जागती हुई बहार चारों ओर रंग भरती है तो मन भी कह उठता है, उठो कुछ नया करो। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को सुंदर बनाने की कोशिश ही जीवन को सार्थक बनाती है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

आवाज़ सुनी वो ट्रिंग ट्रिंग वाली, और आवाज़ सुन के एकदम कितने सारी प्यारी मेमोरीज जो है वापस आ गई है ना। आज के टाइम पे फ़ोन बजता है तो हम स्क्रीन देखते हैं,

कौन कॉल कर रहा है, नाम क्या है, नंबर क्या है, स्पैम है तो हम कॉल नहीं उठाते। लेकिन एक टाइम था जब घर पे फोन बजता था और पूरा घर जो है अलर्ट हो जाता था एक ही लाइन के साथ, वो है कि फोन बज रहा है। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, ऑन आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। तो ये वाली जो आवाज़ है काफ़ी नॉस्टैल्जिया है हमारे लिए स्पेशली, है ना। और जैसे मैंने कहा, ये ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनते ही पूरा घर जो है अलर्ट हो जाता था और फिर रेस ही होती थी कि सबसे पहले रिसीवर कौन उठाएगा, मतलब हेलो। और अगर सामने वाला कुछ भी नहीं बोला तो फिर वो अलग सा टेंशन कि ये फ़ोन किसका है और फिर किसके लिए ये फ़ोन आया है, उस इंसान को ढूंढने के लिए एक पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाता था, राइट। एंड अगर वो इंसान कहीं और बिजी है तो फ़ोन को होल्ड में रखो और फिर वो पूरा मसला जो हमने देखा है, राइट। तो आज के स्मार्टफोन्स ने कम्युनिकेशन को काफ़ी इजी बना दिया है, लेकिन पुराने लैंडलाइन फ़ोन में एक अलग ही चार्म था, राइट। वो सिर्फ डिवाइस नहीं था, वो घर का एक मेंबर की तरह हमने उसे ट्रीट किया है। तो आज के इस आवर में हम थोड़ा रिवाइंड करेंगे और बात करेंगे उसी ओल्ड स्कूल लैंडलाइन फ़ोन की। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर. नमस्ते, हेलो, आदाब, विद मी आरजे रफली. तो हम बात कर रहे हैं उस पुरानी लैंडलाइन फ़ोन के बारे में और उससे जुड़ी हुई उस नॉस्टैल्जिया के बारे में कि कैसा एक टेलीफोन बट बहुत सारे इमोशंस और मेमोरीज इस एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं. अगर जैसे कि हम नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं तो म्यूज़िक के बिना तो मेमोरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती, राइट? कुछ गाने और कुछ आवाज़ों में हमें सीधे उन दिनों में ले जाती है जब घर में एक लैंडलाइन होता था, राइट? और वो पूरा अटेंशन अपने और लेता था. तो ऐसा ही कुछ एक गाना है जो लैंडलाइन फ़ोन की अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में, स्पेशली इन द ब्लैक एंड वाइट एरा, तो उस टाइम पे ये गाना भी काफ़ी मशहूर था. तो ये गाना आप सुनिए और उसके बाद हम इस नॉस्टैल्जिक जर्नी पर आगे बढ़ते हैं. तो एंजॉय दिस सॉन्ग, सॉन्ग बाय शमशाद बेगम एंड श्री रामचंद्र.
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ. मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ. हाँ हाँ.

वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब पर उसी पुरानी लैंडलाइन फ़ोन की बारे में और इससे जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में। नो, लैंडलाइन फ़ोन की सबसे इंटरेस्टिंग बात थी क्या? क्योंकि कॉलर आईडी जो है तब हर घर में नहीं होता था। फ़ोन बजता था पर आपको आइडिया नहीं होता था कि दूसरी तरफ कौन है, और जैसे ही हम फ़ोन उठाते हेलो हेलो करके नाम अगर बिना एड्रेस के हमें बुलाए और सिर्फ दोनों तरफ से हेलो की ही आवाज़ आए तो हम सोच रहे होंगे भाई ये इस हेलो के पीछे की आवाज़ इंसान कौन हो सकता है। और फिर अगर पास में मम्मी हो या पापा हो तो उन्हें ही फ़ोन हमने थमा दिया कि भाई आप ही बात कर लो कि कौन है ये, है ना। अपना नाम ही नहीं बता रहे तो हेलो हेलो करके आगे हम क्या बताएंगे। बस इसका सोल्यूशन तो शायद मम्मी पापा के पास होगा, उन्हें पता होगा कि किसका कॉल है, राइट। बट अगर हम इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन कर सके जिन्होंने इस इस सीन में या ऐसा कुछ चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लैंडलाइन फ़ोन जो है वो कभी प्राइवेट नहीं था, राइट। प्राइवेसी नाम की कोई नाम ही नहीं था। अगर आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो घर के सभी लोगों को पता होता था। आप हॉल में फ़ोन बात कर रहे हो सभी सुनते थे, या घर पे अपना सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और आप साइड में अपने फ़ोन बात कर रहे होते हैं, है ना। सुन, एवरीबॉडी नोज। और अगर कॉल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो क्लासिक डायलॉग सुनने को मिलता है कि कितनी देर बात करोगे, और अगर फ़ोन बिल ज़्यादा आएगा देन कल कम्स द अल्टीमेट क्वेश्चन, इतनी देर फ़ोन पे कैसे बात कर लेते हो, राइट। और तब अनलिमिटेड कॉल्स भी शायद उतने नहीं थे।

वीडियो कॉल्स भी हमें नहीं करते थे, वॉइस नोट्स भी नहीं है, बट आज हम इन सारी सुविधाओं को यूज़ करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं या मन किया तो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सारी जो चीज़ें जो शायद हमारे लिए तब बहुत कीमती है, बट आज के टाइम पे हम वो सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो दैट ऑल्सो मेक्स लैंडलाइन फ़ोन अ डिफरेंट अ पीस ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर अस एस्पेशली, राइट? क्योंकि आजकल लैंडलाइन फ़ोन्स उतना हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में काफ़ी रखती है. आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ RJ रफली.

फिर उसे रोटेट करना पड़ता था और फिर उसे छोड़ा जाता था वो टिक टिक करके। और अगर नंबर गलत डायल हो गया, कोई बैकस्पेस नहीं था, कोई एडिट बटन नहीं था, कोई उप्स रॉन्ग नंबर वाली मूवमेंट भी नहीं थी, यू हैव टू रीट्राई, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। और सबसे डेंजरस मूवमेंट, अपने पूरा नंबर डायल कर दिया है और लास्ट डिजिट पर जाके रियलाइज़ हुआ, ओ नो, मैंने 6 की जगह 8 डायल कर दिया, बस कॉल गया। पेशेंस का हमारा कंप्लीट टेस्ट भी हो जाता है। और आज के स्मार्टफोन्स में एक नंबर टाइप करने में सेकेंड्स लग जाते हैं, उस वक्त फ़ोन नंबर डायल करना भी एक मिनी स्किल था। और घर का लैंडलाइन नंबर्स भी याद होते थे, यू नो, फोन वो लिखना और फिर उसे याद रखना, स्पेशली हमारा घर का रेजिडेंस वाला नंबर। और आज कितने लोग अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट देखे बता सकते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि इतने नंबर्स हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं कि बस हम यूँ ही अपने साथ फ़ोन पे उन्हें सेव कर लेते हैं और उन्हें याद करने का ये थॉट भी शायद हमारे दिमाग में क्रॉस नहीं होता है आजकल। चलिए एक और गाना सुनते हैं, फिल्म हमसे है मुकाबला से। एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन आकाश ऑन एफएम रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 पर. नमस्ते, हेलो, आदाब. जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए थोड़ी बहुत उस टाइम में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लैंडलाइन फ़ोन होता था और वो रोटरी फ़ोन होता था, जहाँ पे एक एक नंबर को हमें घुमाना पड़ता था. राइट, सो बीइंग लिटिल नॉस्टैल्जिक हियर इन दिस शो राइट नाउ. तो अब बात करते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी की और उन नंबर्स की. राइट, वो टेलीफोन डायरी एक छोटी सी डायरी होती थी जिसमें हमने फ़ोन नंबर्स लिखे होते थे. नो, पड़ोसियों के, अंकल, आंटी, डॉक्टर हो जाए या इलेक्ट्रीशियन, ऑफिस का नंबर, स्कूल का नंबर और हमारे रिलेटिव्स का नंबर. राइट, और कुछ नंबर्स तो इतने इम्पॉर्टेंट होते थे कि पूरे घर को याद होता था. आज हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं और फ़ोन हमें नाम दिखा देता है. पहले मेमोरी स्ट्रॉन्गर होनी पड़ती थी, नंबर याद रखना पड़ता था, एरिया कोड याद रखो, फिर एसटीडी कोड याद रखो, और अगर दूसरी सिटी में करना है तो एसटीडी बूथ पर जाना होता था. एंड दैट वॉज अ होल लॉट अनदर जगल दैट वी नीड टू डू दैट. रिमेंबर दैट टाइम कि जब हमें जाना पड़ता था एसटीडी बूथ सिर्फ दूसरे शहर में कॉल करने के लिए, और फिर अकेले तो हम जाते नहीं थे, तो कभी कभार सिब्लिंग्स के साथ जाते थे, या अगर मम्मी पापा जा रहे हैं तो उनके पीछे भी हम चल लिए. हालांकि हम अगर कॉल में बात करें या ना करें, मगर जाना कंपलसरी था.

0: जागते नहीं, सजग रहो।
1: सिर्फ रातों में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
0: अफवाहों से,
1: धोखाधड़ी से
0: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति,
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
0: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 101.9. हम बात कर रहे हैं उस पुरानी लैंडलाइन फोन के बारे में, राइट? 90s और अर्ली 2000s में STD और PCO बूथ्स भी कम्युनिकेशन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, राइट? आपको किसी दूसरे सिटी में कॉल करना है, फ़ोन बूथ जाओ, नंबर डायल करो और फिर बात करो, और फिर बिल कैलकुलेट भी करना पड़ता था. कभी कभी तो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते थे बस 5 मिनट बात करनी है, लेकिन इमोशनल कॉन्वर्जेशन में 5 मिनट कब 15 मिनट हो जाते थे पता ही नहीं चलता था. और बूथ के बाहर कोई वेट कर रहा है, भैया जल्दी करो, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू टॉक टू देयर यू नो पर्सन, या अपने फ्रेंड से बात करना चाहे तो हर एक कोई अपनी टर्न के लिए वेट कर रहा होता है उस लाइन में. और आज हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन तब एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल का अपना एक एक्साइटमेंट था. इंडिया में मोबाइल टेलीफोन का फर्स्ट मोबाइल कॉल जो है वो जुलाई 1995 में हुआ था, और उसके बाद कम्युनिकेशन जो है ग्रेजुअली लैंडलाइन इरा से मोबाइल इरा की तरफ शिफ्ट हुआ. लेकिन लैंडलाइन की मेमोरीज वो इतनी इजीली डिस्कनेक्ट थोड़ी ना होती है. और अब एक सॉन्ग जो बिल्कुल उस एरा की यंग लव फीलिंग को कैप्चर करता है, वो टाइम जब किसी फ़ोन का आना इट्सेल्फ वाज एन इवेंट. रिंग सुनते ही यू नो हम सोचते थे कि शायद वो उन्हीं का फ़ोन है या नहीं, राइट? सो लेट्स ब्रिंग दैट फीलिंग विद दिस सॉन्ग. सो एंजॉय दिस सॉन्ग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन आकाशवाणी FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9।
1: Well, बात हो रही है पुरानी लैंडलाइन फोन के बारे में। तो लैंडलाइन को जैसे मैंने कहा, हम एक फैमिली फोन की तरह ट्रीट करते हैं। वो इंडिविजुअल फोन नहीं था, राइट? एक ही नंबर, एक ही रिसीवर और उस फोन से कनेक्टेड पूरी फैमिली की स्टोरीज, पापा के ऑफिस के कॉल्स, मम्मी की रिलेटिव से लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस और बच्चों की फ्रेंड्स के कॉल्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करना और कभी कभी नेबर्स भी। आपके फ़ोन पर कॉल आया है करके भी हमें बुलाना, क्योंकि हमने नेबर का नंबर दिया रखा होता है। तो फ़ोन जो था लिटरली नेबरहुड कम्युनिकेशन सेंटर बन जाता था, और इसी वजह से लैंडलाइन के अराउंड एक स्ट्रेंज सा कम्युनिटी फीलिंग भी थी। आज पर्सनल फ़ोन है, पहले फ़ोन जो था वो शेड था। राइट? तो आज हम कहते हैं कि दैट्स माई फ़ोन, और पहले होता था घर का फ़ोन। बिग डिफरेंस, राइट? और अब आते हैं सबसे नॉस्टैल्जिक पार्ट पर, वेटिंग फॉर अ फ़ोन कॉल। अगर आज कोई कॉल नहीं करता है तो हम मैसेज कर देते हैं उन्हें कि कहाँ पे हो, या हमें पता चल जाता है कि आगे वाले इंसान ने उस मैसेज को देखा भी है या नहीं, या रिप्लाई किया है, या अनदर मैसेज फिर हम डाल देते हैं। अगर कोई सामने से रिप्लाई नहीं हो जाता है, फिर भी रिप्लाई नहीं होता, तो हम कोई और सोशल मीडिया अपडेट्स चेक कर लेते हैं या लास्ट सीन चेक कर लेते हैं। पर उससे पहले हम सिर्फ इंतज़ार करते थे फ़ोन के पास बैठकर, और हर बार जब फ़ोन रिंग नहीं करता आप सोचते थे कि शायद अब आएगा, और जब फाइनली फ़ोन जो है वो रिंग बजता था तो फाइनली हार्ट को लगता था, यार फाइनली बज ही गया। दैट एंटिसिपेशन वॉज समथिंग एल्स। आज कम्युनिकेशन इंस्टेंट है, लेकिन इंस्टेंट कम्युनिकेशन ने वेटिंग का वो लिटिल एक्साइटमेंट भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, राइट? तो बात करते हैं और इस छोटी सी नॉस्टैल्जिक ट्रिप के बारे में, लेकिन इस अगले गीत के बाद। तो बने रहिएगा ओनली ऑन FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। तो जैसे हमने अभी तक बात किया है कि उस फ़ोन का इंतज़ार हो या लैंडलाइन फ़ोन पे घर का फ़ोन हो, इंडिविजुअल फ़ोन नहीं था, और फिर अगर हमें अगले कुछ दूसरे शहर में कॉल करना पड़ता था तो एसटीडी या पीसीओ बूथ जाके जो है कॉल करना होता था, तो वो फुल एंटिसिपेशन, वो एक पूरा घर का इवेंट की तरह हमने ट्रीट किया है। तो आज कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी इंस्टेंट हो गई है, और कहीं ना कहीं उस एक्साइटमेंट को शायद वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। तो क्या हमने आज के स्मार्टफोन्स बेटर है? एब्सोल्युटली नो डाउट, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को जो है फास्टर बना दिया है, ईजी बना दिया है, और ज़्यादा एक्सेसिबल भी बना दिया है। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, फोटो भेज सकते हो, अपना लोकेशन भेज सकते हो, राइट? एक क्लिक में दुनिया किसी भी कोने पे आप बात कर सकते हैं। बट नॉस्टैल्जिया का पॉइंट ये नहीं है कि ओल्ड वाज ऑलवेज बेटर, पॉइंट ये है कि कुछ ओल्ड थिंग्स, वो कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं, हमें वो एक्सपीरियंसेस देते हैं जो शायद टेक्नोलॉजी उसे कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। लैंडलाइन ने हमें पेशेंस दिया है ना, वेटिंग दिया है, फैमिली इंटरेक्शन दिया है।

नंबर्स याद करना सिखाया और सबसे इम्पोर्टेंटली फ़ोन कॉल को इम्पोर्टेंट बनाया। आज हम दिन में डजन्स ऑफ कॉल्स को उठा सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन क्या हर कॉल याद रहता है? प्रॉबेबली नॉट। पहले एक कॉल कभी कभी पूरी मेमोरी बन जाती थी। तो अगर आपके घर में भी कभी लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, तो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। वो फ़ोन कैसा था, उसकी कलर क्या थी, वो रोटरी था या पुश बटन, कहाँ रखा होता था आपके घर पे, और सबसे इम्पोर्टेंट, उस फ़ोन से जुड़ी आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है, आप उसे थोड़ा रिलीव कीजिए, है ना? और टेक्नोलॉजी बदल गई है, फ़ोन्स बदल गए, कम्युनिकेशन बदल गया, लेकिन कुछ मेमोरीज वो परमानेंटली कनेक्टेड रहती हैं। और शायद इसीलिए एक पुराना लैंडलाइन फ़ोन सिर्फ एक ओल्ड डिवाइस नहीं, इट्स अ पीस ऑफ आर चाइल्डहुड, राइट? और इसी ब्यूटीफुल ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन को एंड करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली, आप सुनते रहिए नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। और दोस्तों, आज का रिमाइंडर काफ़ी सिंपल सा है, टेक्नोलॉजी को एंजॉय कीजिए, लेकिन मेमोरीज को सेव करने के लिए क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत हमें नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। तो हम जो है अब कुछ बात करने वाले हैं इंडिया की पहली यानी कि फर्स्ट वर्चुअल जू के बारे में, जो कि होगा एक 4D सिनेमा और डिजिटल जंगल सफारी के साथ। सोचिए, अगर आप जू गए हैं, यूजुअली क्या होता है, एक एनक्लोजर से दूसरे एनक्लोजर तक हम वॉक करते हैं, कभी हम टाइगर को देखने के लिए 10 मिनट वेट करते हैं, या टाइगर कभी कभी नो शेड में होते हैं आराम करते हुए, या कभी कभी हमें दिखाई नहीं देते, राइट? और फिर नेक्स्ट एनक्लोजर से फिर हम एनिमल्स को एक एक को देखते हुए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जू में एनिमल्स को देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके एक्चुअल एनक्लोजर के सामने खड़े हो, आप एक डिजिटल जंगल के अंदर जा सकते हो, क्योंकि इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस अब हाई टेक ट्विस्ट के साथ आ रही है। इंदौर में एक वर्चुअल जू इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ जंगल और वाइल्ड लाइफ को डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शंस और इमर्सिव इफेक्ट्स और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू रिक्रिएट किया गया है। और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। तो देखते हैं कि ये इमेजिनेशन का जो डोर हमने ओपन किया है, कि कैसे हम एक डिजिटल जू में, डिजिटल जंगल में इन सारे इंक्लोजर्स को देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट के साथ इसे डिज़ाइन किया है। एक जू है बट नॉट द एक्चुअल जू ऑल्सो, तो जिसके बारे में हम बात हो करेंगे इस गीत के बाद। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

हम बात कर रहे हैं एक नई वर्चुअल जू के बारे में, यानी कि इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल जू के बारे में जो ओपन हुआ है इंदौर में, और वो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी कि पॉपुलर इंदौर जू के अंदर डेवलप किया गया है। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आपको सिर्फ केजेस और इन्क्लोजर्स नहीं मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्क्वायर फीट में बना ये वर्चुअल जू जो है टेक्नोलॉजी को वाइल्ड लाइफ के साथ कंबाइन करता है। मतलब आप फिजिकली जंगल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको जंगल का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही है। VR, 3D विजुअल्स, डिजिटल प्रोजेक्शंस, इंटरैक्टिव स्टिमुलेशंस और सेंसर इफेक्ट्स। सो बेसिकली जंगल का एक्सपीरियंस विदाउट एक्चुअली एंटरिंग द जंगल। तो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप टेक्नोलॉजी आपको जंगल का एक्सपीरियंस दे सकता है, तो क्या आप एक्चुअल जंगल सफारी को रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज़ नॉट रियली, बिकॉज रियल जंगल की खुशबू जो है उन पेड़ों के बीच से आती, हवा से आती है, बर्ड्स की नेचुरल साउंड्स, और सडनली सामने आ गया एक वाइल्ड एनिमल। उस एक्सपीरियंस को कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता है, लेकिन वर्चुअल जू का पर्पस शायद रिप्लेसमेंट बनना नहीं, एक्सपीरियंस और एजुकेशन का एक नए फॉर्मेट में उसे प्रेजेंट करना है। और इस वर्चुअल जू का एक मेजर अट्रैक्शन है डिजिटल जंगल सफारी। अब सफारी वर्ड सुनते ही हम क्या इमेजिन करते हैं? जीप, फॉरेस्ट, कैमरा रेडी, बाइनोकुलर्स रेडी, और सबकी नज़र एक ही डायरेक्शन में कि टाइगर दिखा या नहीं, राइट? लेकिन यहाँ सफारी का कॉन्सेप्ट डिजिटल है। आप डिजिटली जो है रिक्रिएटेड फॉरेस्ट हैबिटेट्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। डिफरेंट लैंडस्केप्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्रिएट किए गए हैं, उसे देख सकते हैं। और इस एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो है वाइल्ड लाइफ एजुकेशन। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, विजिटर्स को एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में बताया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स यहाँ कैसे काम करते हैं, और कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम एक चाइल्ड को बोलेंगे आज डाइवर्सिटी के बारे में आपको क्या पता है या पढ़ना हो, रिएक्शन कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन एक डिजिटल जंगल के थ्रू मिले, एनिमल्स सामने अपियर हो, साउंड्स आ रहे हों, तो विजुअल्स मूव कर रहे हो, सडनली लर्निंग जो है बिकम्स एन एक्सपीरियंस। और यही पावर है इमर्सिव टेक्नोलॉजी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली वर्चुअल जू के बारे में कि कैसे ये एक यू नो एजुकेशनल के रूप में काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है जब बच्चों को यू नो क्योंकि देखने से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ जो है वहाँ एक बच्चे को सीखने को मिल सकता है। और ये भी कि कंजर्वेशन कितनी ज़रूरी है, राइट। और अब आते हैं वर्चुअल जू के एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स पर, वो है होलोग्राम जू। अब होलोग्राम वर्ड सुनते ही टेक्नोलॉजी फीलिंग वाली फीलिंग तो आ ही जाती है, क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसा विजुअल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है जिसे किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल के सामने प्रेजेंट होने का इल्यूजन क्रिएट होता है। तो इमेजिन कीजिए, आप एक स्पेस में एंटर करते हो और सडनली आपके आसपास एक एनिमल डिजिटली अपीयर हो जाता है। आपको लग सकता है, वेट, ये तो मेरे सामने ही है, बट एक्चुअली ये एक डिजिटल प्रोजेक्शन है, यानी वाइल्ड लाइफ को देखने का एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे। और यहीं पर वर्चुअल जू में एक डिजिटल गार्डन और डिजिटल एक्सपीरियंस जोन भी है, तो मतलब विजिटर्स को एक ही टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मिलेगा। डिफरेंट इंटरैक्टिव स्पेसेस रहेंगी, डिफरेंट विजुअल्स, डिफरेंट वेज टू एक्सप्लोर। और एक और फीचर जो पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वह है डिजिटल मेज। लेकिन नॉर्मल मेज़ नहीं है ये मेज़ एनिमल साउंड्स के कॉन्सेप्ट्स पर डिज़ाइंड है, तो आपको विजुअल क्लूज के साथ साउंड्स भी गाइड कर सकते हैं। मतलब ये थॉट काफ़ी अच्छा आया है कि इस जू में एक ऐसा टेक्नोलॉजी को इमर्स किया जा रहा है जिसे शायद हम सीख सकते हैं, क्योंकि सही सी बात है, हम ओरिजिनल जू को रिप्लेस नहीं कर सकती है, राइट। और जंगल को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट शायद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें कुछ सीखने का जो हम शायद नो रियल नेचर में वाइल्ड लाइफ में नहीं कर सकते, तो शायद यहाँ पे एक्सपीरियंस करने का हमें इससे एक ज़रिया हमें मिल सकता है।

0: और बात हो रही है इंडिया की पहली विजुअल जो है जंगल के बारे में, तो हमने बात किया जहाँ पे होलोग्राम की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है और कैसे डिजिटल प्रोजेक्शंस वो सब का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है, डिजिटल जंगल सफारी के बारे में हमने बात की है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 4D सिनेमा की। अब वर्चुअल जू का वो पार्ट जिसके बारे में नो बच्चे सुनेंगे तो शायद सबसे पहले वही जाना चाहेंगे, वो है 4D सिनेमा। हमने 3D सिनेमा सुना है, मे बी 4D भी, लेकिन ये 14D, अब ये नाम क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है क्योंकि इस एक्सपीरियंस में स्क्रीन पर जो हो रहा है उसके साथ फिजिकल इफेक्ट्स भी सिंक किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्क्रीन पे मूवमेंट है तो सीट्स मूव कर सकती हैं, और जंगल में हवा चल रही है तो आपको विंड इफेक्ट फील हो सकती है। वाटर सीन हो, वाटर स्प्रे हो, फॉग हो या फॉग इफेक्ट, बबल्स, ये सारी, और रिपोर्टेडली स्मेल इफेक्ट्स भी एक्सपीरियंस का पार्ट है। मतलब स्क्रीन पर जंगल और थिएटर में आपको जंगल का एनवायरनमेंट फील कराने की कोशिश किया जाएगा विद दी 14D सिनेमा के जरिए पे। और यहाँ पे एक 3D डोम थिएटर भी जो है फैसिलिटेट किया गया है, जहाँ डोम स्क्रीन का एडवांटेज ये है कि विजुअल्स आपके फील्ड ऑफ व्यू को ज़्यादा सराउंड कर सकते हैं। तो जब आप फॉरेस्ट, माउंटेन्स या वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट्स देखते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल फ्लैट स्क्रीन से डिफरेंट फील हो सकता है। और वर्चुअल जू को लार्जर आइडिया भी यही है कि टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन के लिए यूज़ करना, स्पेशली फॉर यंग विजिटर्स। आजकल के नो जो बच्चे डिजिटल विजुअल्स के साथ ऑलरेडी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो अगर उन्हें नेचर और वाइल्ड लाइफ के कॉन्सेप्ट्स भी इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू समझाएं, मे भी लर्निंग विल बिकम मोर एंगेजिंग फॉर देम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RJ रवली।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు

0: तो बात कर रहे हैं हम इंदौर की वर्चुअल जू के बारे में, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना भी ज़रूरी है कि वर्चुअल जू का एक्सपीरियंस कितना भी एडवांस हो, रियल वाइल्ड लाइफ का रिप्लेसमेंट नहीं है। रियल जंगल में अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, आपको टाइगर दिखेगा या नहीं, बर्ड कौन सा साउंड करेगा, वेदर कैसा होगा, लाइट कैसी होगी, नेचर अपनी मर्जी से चलता है। टेक्नोलॉजी में हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वर्चुअल जू को एक सप्लीमेंट्री एक्सपीरियंस के रूप में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप वाइल्ड लाइफ को समझ सकते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में सीख सकते हैं, और कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और शायद उसके बाद रियल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की इम्पोर्टेंस शायद हमें और ज़्यादा समझ आए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रहा है 12:54:24 इन द स्टूडियो क्लॉक।
1: నేహా, ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్ గా కనిపిస్తున్నావు.
2: ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपके साथ आरजी रवली। तो आज का फोन इन टॉपिक सुनते ही शायद आपके फेस पर एक स्माइल आ गया है, बिकॉज वी आर गोइंग बैक टू द 90s एंड अर्ली 2000s। वो टाइम जब थोड़ी लाइफ सिंपल थी, फ़ोन था लेकिन स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट था लेकिन हर सेकंड ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं थी, फ़ोटोज़ थी लेकिन हर फोटो क्लिक करने के बाद इमीडिएटली पोस्ट करना नहीं होता। और इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें उस दौरान की, टीवी पर फेवरेट अपना शो का वेट करना, ऑडियो कैसेट्स या सीडीज़ या वीडियो गेम्स, स्कूल के बाद फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलना, ये सब कुछ हमने इन्जॉय किया है। तो आज का सवाल भी मेरा बहुत ही सिंपल है, जो जुड़ा हुआ है हमारे 90s और 2000, अर्ली 2000 से। तो 90s और अर्ली 2000s की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आज के टाइम पे वापस आप चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके बता सकते हो ऑन 0402323 0030। 90s या 2000s की वो ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको आज के वक्त वापस चाहिए। सो स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 101.9।

0: हाँ,
1: बताइए
0: इसके
1: सर
0: विषय पर बोलना चाहूंगा कि
1: जी बिल्कुल.
0: 1990 और 2000 के बीच का जो समय था वो सोने से भी अच्छा समय था,
1: जी
0: क्योंकि उस समय हम जमीन पर बैठ करके पूरे परिवार के साथ एकत्रित भोजन करते थे। भोजन से पहले एक श्लोक कहने की परंपरा थी और उस श्लोक को हम कहते थे। उस श्लोक का अर्थ यह था कि परमात्मा के हम आभार मानते थे कि उसके कारण आज हमें भोजन प्राप्त हुआ है। साथ साथ भोजन में भी कोई अधिक पदार्थ नहीं हुआ करते थे,
1: जी, घर का
0: लेकिन
1: सिंपल खाना होता था.
0: लेकिन जो माँ, हमारी माँ जो भोजन बनाती थी, उसके हाथों में सचमुच में इतनी शक्ति थी कि भोजन इतना अच्छा बन जाता था कि हमें दूसरे कोई अच्छे पदार्थ वगैरह की याद भी नहीं आती थी।
1: जी.
0: और वह जो माँ का परोसा हुआ भोजन था, वो आज हम चाहते हैं कि वो मिल जाए तो सोने से सुहागा होगा।
1: जी,
0: उस
1: राइट.
0: समय की और एक स्मरण है मुझे कि हम सभी का भोजन, यानी हम भाई बहन और पिताजी का भोजन होने के पश्चात ही हमारी माँ भोजन के लिए बैठती थी। तो
1: जी
0: ये जो परिवार के प्रति उनका जो योगदान है, तो वो हम भूल नहीं सकते। तो वो सबसे अच्छा समय था मेरे जीवन का। धन्यवाद।
1: आप राइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग. जी, तो आप भी अगर आपके ओपिनियंस, आपकी आप कौन सा नो चीज़ मिस कर सकते मिस कर रहे हो 90s का या अर्ली 2000s का, तो आप जो आप इस टाइम पे वापस चाहते हो, तो कॉल करके या मैसेज करके हमें बताइए. फिलहाल हम सुनते हैं एक और गाना. सो स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

101.9. Welcome back. बात आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली. तो फिलहाल हमारे पास मैसेज आया है हुदा का बाबा नगर से. हुदा ने कहा है कि हर साल अच्छे दिन का इंतजार करते करते दिन गुजर गए. बाद में पता चला कि गुजरते दिन भी काफ़ी अच्छे थे. और 1990s की आउटडोर गेम की अगर बात करें तो पड़ोसी के घर कभी कभी जाना, उनके घर की उनको घर को भी अपना घर समझना,

0: 7.9.
1: ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా DLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. तो हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो.
3: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून. आदाब रवि जी.
2: गुड आफ्टरनून सर
3: जी. शेर खान बोल रहा हूँ तालाब कट्टा अमन नगर से. सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब
2: जी सर.
3: और अल्लाह आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, दुआएं है जी.
2: राइट सर. तो 90s या अर्ली 2000s का वो चीज है जो आप क्या मिस करते हो मोस्टली?
3: जी रवि जी, जितना भी वक्त हो गया 50, 60, 70, 80, 90, 20, ये पुराना वक्त ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत याद आता है.
2: अच्छा.
3: भला ही इतनी सारी सुविधाएं सहूलतें नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी. देखिए दिक्कत और तकलीफ हर दौर में लगा हुआ है, जब भी था और अब भी है
2: जी.
3: लेकिन वो चीजों में, वो माहौल में जो मजा था वो अपना मजा था. ये आज जो जितना भी हमको आसानियां मिल रही है लेकिन इसके कदर नहीं है, हम इसके आदि हो गए हैं और हम उस तरह के सेहतमंद नहीं है जिस तरह पहले रहते थे. और उस तरह हम अपने के, हम जो अपने परिवार वाले होते थे, जो अपने दोस्त लोग होते थे, हम अपनों के अपने होते थे. आज हम अपने होते हुए भी अपनों के अपने नहीं है, अपने दोस्तों के दोस्त नहीं है. मैं वो वक्त मिस करता हूँ जो अपने परिवार वालों के साथ जो एक प्यार वाला माहौल रहता था, अपने दोस्तों के साथ प्यार वाला माहौल वक्त रहता था
2: जी.
3: सबको, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जब एक वक्त मिलता था. आज किसी के पास वो वक्त नहीं है. आज बहुत कुछ है लेकिन वो नहीं है. जब खाना कम था, लजीज था, लेकिन आज एक ऐसी बात हो गई कि खाना बहुत है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज बहुत कुछ है लेकिन वो खाने में नमक नहीं है. ऐसी ऐसे हालात हो गए हमारे और सेहतमंद नहीं रहे हैं हम. सेहत से दूर हो गए. तो मैं चाहता हूँ सब सेहतमंद रहे, इतनी बीमारियां भी ना हो, दवाखाने भी ना भरे हो और घरों में भी कोई बीमार ना हो.
2: जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू.
3: और अपने परिवार वालों का, अपनों को वक्त मिले, यही मेरी दुआ है और यही मैं मिस करता हूँ. और हमारे मुमताज बाजी को भी प्यार भरा सलाम. रवली जी एक सॉन्ग प्ले की

0: सुना?
1: जी सर बोलिए, कौन सा?
0: फिल्म का नाम है इज्जत, धर्मेंद्र साहब की मूवीज है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। आप सर्च करें तो मिल जाएंगा शायद,
1: राइट
0: यही
1: सर,
0: उम्मीद
1: बिल्कुल
0: करता हूँ आपसे,
1: कोशिश
0: आप वक्त
1: करती हूँ।
0: दीजिए,
1: थैंक
0: शुक्रिया
1: यू।
0: बहुत बहुत।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार सर
0: मैं बोले कि प्रभाकर रो बात कर रहा हूँ,
1: जी। प्रभाकर जी,
0: ऑन एयर मैडम। तो
1: बिल्कुल आप ऑन एयर है सर।
0: हम क्या मिस हो गया बोले तो दुनिया में, जिंदगी में है। हेलो,
1: जी सर, मैं सुन रही हूँ। 90s और अर्ली 2000s की बात हो रही है, क्या मिस कर रहे हो उस दौरान का आप?
0: 90s पर 2000,
1: हाँ, अर्ली 2000s।
0: हाँ 2000 तक मैं खा रहे थे। रवा लड्डू बनाते थे हमारे मिसेस,
1: ओके।
0: रवा लड्डू जबरदस्त, अच्छा घी डाल के और काजू किशमिश से लेके रवा
1: जी
0: लड्डू अच्छा। वो 2000 में वो गुजर गए हमारे मिसेस,
1: ओके सर। हाँ
0: स्वर्गस्थलु అయిపోయారు, అయిపోయిన తర్వాత నుంచి నేను మిస్ అయిపోతున్నా రవ్వ లడ్డూలు తిందాం అంటే।
1: జీ, ఉన్కా హాత్ కా స్వాద్ బనా హువా వో ఆప్ మిస్
0: बहुत
1: కర్ రహే హోంగే।
0: बहुत अच्छा बनाते थे,
1: जी सर।
0: बहुत पसंद है मेरे को भी। अभी मिस हो गया मैं।
1: राइट राइट सर, वो
0: माय
1: शायद।
0: बोलेट प्रभा करो,
1: थैंक
0: नमस्कार।
1: यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो,
0: नमस्कार मैडम, कैसा होना बहुना मैडम करो।
1: పౌనండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు?
0: చాలా బాగున్నానమ్మా,
1: చెప్పండి సార్, టాపిక్ విన్నారా?
0: లేదమ్మా ఒకసారి చెప్పమ్మా।
1: సార్ టాపిక్ 90s ఇంకా 2000s గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అప్పుడు దొరికే వస్తువుల గురించి మీరు ఇప్పుడు ఏం మిస్ అవుతున్నారు? ఒకవేళ ఇప్పుడు
0: ఓకే మేడం,
1: కావాలంటే ఏది ఆ టైంలో దొరికేది, ఇప్పుడు ఏం కావాలనుకుంటారు?
0: 90s 2000 చెప్పమంటారా?
1: 90s and 2000s సార్, అర్లీ 2000s.
0: ఓకే మేడం, ఓకే సరే। ఆన్లైన్ మేడం,
1: ఆన్ ఎయిర్ ఉన్నారు సార్
0: కే రమేష్ మాట్లాడుతున్నానమ్మా। అప్పుడు ఇప్పుడు 2019 2020 వరకు అయితే 70s 80s లో మాత్రం చాలా రేటు చాలా తక్కువ రేట్ ఉన్నాయి మేడం। ఒక రూపాయి తాజ్మహల్ తీసుకెళ్తే హ్యాబిట్స్, పెద్ద తాజ్మహల్ హ్యాబిట్స్, పెద్ద హోటల్ అది, రూపాయి తీసుకుంటే ఒక ఇడ్లీ ఒక దోశ ఒక కాఫీ వచ్చేదమ్మా ఒక ఒక్కటే రూపాయిలో, ఒక ఇడ్లీ ఒక దోశ ఒక కాఫీ వచ్చేదమ్మా,
1: రైట్ సార్. సో అది మీరు
0: అట్లా
1: మిస్
0: ఉండేది। ఇప్పుడు
1: అవుతున్నారు.
0: చూడమ్మా, ఒక కాఫీ తాగాలంటే దగ్గర 25-30 రూపీస్ తక్కువ లేదు కాఫీకి, అదే తాజ్మహల్ హోటల్తో 60-70 రూపాయలు 75-80 రూపాయలు ఉందన్నమాట, అంత ఫరక్ అయిపోయిందన్నమాట।
1: राइट, तो हमने पूछा है आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल, है ना? 90s और अर्ली 2000s में जो वो चीज़ें हैं जो हम मिस कर रहे हैं, उसमें नो वो ऑडियो कैसेट्स हो सकती है, जो हम वेट करते थे जब मूवी के गाने उनमें रिलीज़ नो कैसेट रिलीज़ होता था, तो फिर हम जाके उसे खरीद के अपने घर के टेप रिकॉर्डर में, अगर घर पे है तो उसे उस पर लगा के पूरा परिवार इकट्ठे होके सुनना, राइट? और फिर अपने मनपसंदीदा गाना टेप उस कैसेट में रिकॉर्ड करवाना, वो भी एक अपने आप में एक टास्क ही था हमारे लिए, है ना? और फिर सीडीज़ का वेट करना, या वो वीडियो गेम्स, क्योंकि हर किसी के पास तब अवेलेबल नहीं था, तो शायद हम बाहर जाके या किसी के घर पे अगर होता तो वहाँ पे हम खेला करते थे. और अगर खाने की अगर हम बात करें तो कुछ वैरायटीज़ या कुछ स्वाद जो हमने उस टाइम पे शायद खाया होगा, उसे थोड़ा हम रिप्लिकेट आज उतना शायद एक सेम टू सेम शायद नहीं कर पाएंगे, बट हमारे इस दिलो दिमाग में उस एग्जैक्ट फूड का पिक्चर है, राइट? हमने पहली बार कब खाया था और उसका स्वाद भी आई एम श्योर हमारे जहन में है, क्योंकि कुछ ऐसे पुरानी बेक आउटलेट्स है खाने की जो हमारे बचपन की मेमोरीज के साथ जुड़े हुए हैं. हालांकि अगर वो आउटलेट्स अभी भी ओपन नहीं है, बट वी डू रिमेम्बर दैट टेस्ट, दैट टाइम, राइट? है ना? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ ऑलवेज मूव्स ऑन, राइट? तो बदलती रहती है, चेंज इनएविटेबल है, बट ये कुछ ऐसी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज है जो हमारे लिए काफ़ी प्रेशियस हो जाती है और हमारी लाइफ में ज़्यादा मायने रखती है, राइट? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं हेलो रेनबो पे। 90s और अर्ली 2000s की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज के हम वक्त पे मिस कर रहे हैं? तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हेलो,
1: हेलो मैडम,
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते मैडम। अभी 2000 की जो बात करें ना, जब तो मैं छोटी थी, तो
0: जी।
1: जब हम सिकंदराबाद पहुंचे था, बैबलोस के उधर आगे थे क्लासे को, तो उस समय तो अभी हम हसमत पेट आ गए, तो
0: जी
1: अभी 2 ही रोज हो रहा उस जगह को, उस मकाम को, उस वक्त के हालात को जो याद करके बहुत दुख आया। बहुत पहले का दौर, पहले का जो माहौल था, पहले का जो वक्त था बहुत अच्छा था, बहुत मजा आता था उस वक्त के जो पोजीशन को याद

0: गया कि बहुत दुख हुआ मेरे को, अभी 2 रोज हो रहा हो बाप याद करके, अभी हम हसमत पेट आ गए।
1: अच्छा जी,
0: अच्छा
1: अच्छा
0: अच्छा काफी बहुत अच्छा लगा मैडम, एक गाने की रिक्वेस्ट है मैडम, अब यही बात पे टॉपिक
1: हाँ
0: पे, अभी
1: जी जी
0: यही टॉपिक पे गाने की रिक्वेस्ट है,
1: जी कहिए
0: याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों फुलाए हमने,
1: जी जी
0: ये
1: जरूर
0: गाने की
1: ट्राई
0: दिलेक
1: करेंगे सर
0: मंदिर
1: मैम
0: की
1: प्ले।
0: कोशिश करो, अभी ये टॉपिक पे गाना जमता। ठीक
1: बिल्कुल बिल्कुल ट्राई
0: है, ठीक
1: करेंगे। थैंक यू।
0: है, थैंक यू।
1: और कॉलर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम
1: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
2: जी। मैं रेडियो शौकीन सरवर अली है मेरा नाम।
1: जी सरवर जी, तो बताइए सर, आप क्या मिस करते हो 90s से
2: मैं
1: अर्ली
2: तो
1: टू
2: कुछ नहीं मिस
1: थाउजेंड्स
2: करता मैडम, मेरे पास हर चीज है, लेडीज
1: का?
2: से पहले की हर चीज मौजूद है, कोई
1: जी जी
2: चीज मिस नहीं करता हूँ। सिर्फ
1: ओके,
2: जमाना वही है, सब वही है, लोग बदल गए बस, सिर्फ
1: अच्छा
2: ऐसा
1: ओके
2: है। मैं मेरे सेठ को मिस करता हूँ बस,
1: ओके
2: क्यों
1: ओके
2: बोले तो शर्त लगा के टाइम बॉन्ड की, ये कमान से वो कमान तक अगर 5 मिनट में गए तो बनमलाई खिलाते थे,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
2: जो गालियां देके मार के जो खिलाते थे, वो चीजें
1: जी
2: मेरे को याद आती उनकी
1: जी
2: बस। क्यों
1: ओके
2: बोले तो
1: नाइस,
2: उनके जो गालियों में जो प्यार था,
1: बिल्कुल
2: खिलाते थे सोने का निवाला, देखते थे दुश्मन की नजर, ऐसा था हमारे सेहत का मामला।
1: जी जी
2: इसीलिए हर चीज को मैं, पुरानी यादें, कोई चीज में हर चीज उठा के रखा आज तक, कोई चीज
1: राइट।
2: मिस नहीं है मेरे पास, ऐसा है। बस मेरे सेठ के बातें याद आती बस।
1: राइट
2: ये गाने के शायद आपके पास नहीं होगा, शायद मैं जो गाना बोल रहा हूँ, ये गाना है एक श्री फरहाद नाम है मूवी का,
1: जी
2: गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, ऐसा है। और एक वो जो गाना है ना तहलका मूवी में, जो बीत गया है अब दौर ना आएगा,
1: जी
2: ऐसा है। पहले का दौर, लोग चेंज होते रहते ना मैडम,
1: बिल्कुल
2: लोग मरते रहते, पैदा होते रहते, तो माहौल चेंज होते रहता,
1: जी
2: वो
1: सर
2: एक ही चीज को पकड़ के नहीं रह सकते। पुराने के लोगों के साथ हर चीज ऊपर जाती, नीचे कुछ नहीं आती वापस, ऐसा मामला है।
1: राइट सर,
2: शुक्रिया आपने
1: थैंक यू,
2: कीमती वक्त दिया आपका।
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग।
3: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్ గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్ గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। तो हम बात कर रहे हैं 90s और अर्ली 2000 की उन मेमोरीज के बारे में, या उस वक्त जो चीज़ें मिलती थी जो आज के टाइम पे हम मिस कर रहे हैं, राइट। और ऑनेस्टली ये दोनों जो टाइमलाइंस है, इन दोनों में ही एक अलग ही चार्म था, राइट। हमारे पास टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन टाइम शायद हमारे पास ज़्यादा था। और आज एंटरटेनमेंट हमारे हाथ में है, लेकिन तब एंटरटेनमेंट के लिए हमें घर से बाहर निकलना होता था। आज फ्रेंड्स ग्रुप चैट में हम हैं, लेकिन उस ग्रुप में हाल ही ऐसा होता है कि रोज़ हम बात करते हैं, राइट। तब फ्रेंड्स गली के कॉर्नर पे हमें मिल जाते थे बिना मैसेज के, वो टाइम पे एवरी डे वो वहाँ मिल ही जाते थे। आज मेमोरीज क्लाउड में हम सेव करते हैं, तब मेमोरीज हम हमारे दिल में सेव करते थे। और बहुत सारे ऐसे अलग किस्से हैं जो हम हमारे मेमोरीज के साथ और हमारी लाइफ के साथ उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और शायद इसीलिए नॉस्टैल्जिया इतना पावरफुल होता है कि हम एक्चुअली पास्ट में वापस नहीं जा सकते, राइट। बट हम बस उस वक्त की फीलिंग को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए गुजरा हुआ ज़माना हमें ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस है। आने वाला पल क्या लेके आता है, वो थोड़ा हमारे लिए एंटिसिपेशन की तरह काम करता है। तो शायद इसीलिए भी गुजरे हुए दौर से हमारा नाता ज़्यादा बेहतरीन होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेल दोस्तों, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:54:25, यानी कि वक्त का इशारा हो चुका है। आपका और मेरा सफ़र यहीं समाप्त होता है, तो आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले शो में। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। मैं आरजे रफली आपसे लेती हूँ विदा, स्टे ट्यून्ड।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,

0: ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ್
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर सजग भारत
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

FM Rainbow 101.9.

0: to clap. Clap to clap.
1: Boys and girls.

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 4:04 దాటి 33 సెకండ్లు అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
2: मैं गीतिका और निहाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. और यकीन मानिए, हर बार की तरह हमारा आज का ये अंक भी बहुत ही मार्मिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं. और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके कार्यकाल में इनकी उपलब्धियाँ हम सभी के साथ आज शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसे आप और हम कहते हैं संदेश टू सोल्जर्स. तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल विवेक चौहान का, जो है एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर. कर्नल विवेक चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में. और हर बार की तरह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक सफल परीक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं. और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि आप यही मानते हैं कि आपका देश सर्वप्रथम है. आपकी यात्रा, आपका वृत्तांत जरूर आपकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना? किस तरह भारतीय सेना आपके लिए सर्वोपरि हो गई? कौन सा ऐसा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया और आज आप हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को सुनाने के लिए?
3: गीतिका जी, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से तहे दिल पर नमस्कार, गुड इवनिंग. बढ़िया क्वेश्चन है, यू नो, कि क्यों फौज ज्वाइन करी और क्या मोटिवेशन थी फौज ज्वाइन करने के लिए. तो हम पहाड़ी इलाके से हैं, मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ जो है फौज, डिफेंस फोर्सेस एक

0: बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता है, हमारी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एंड काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं फ़ौज ज्वाइन करने के लिए. ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, मेरे दादाजी फ़ौज में थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करी. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उसमें उन्हें गोली लगी. उसके बाद मेरे पिताजी भी फ़ौज में थे और उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया. बाद में उनको भी जो है ऑपरेशंस में गोली लगी थी. तो वाइल ग्रोइंग अप, बड़े होते समय उनसे कई बार उनकी गाथाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी. दैट वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. तो यू नो, और उस एनवायरनमेंट में एज अ इम्प्रेशनेबल यंग मैन जो है फौज जो है बिल्कुल जहन में रही और इसलिए यू नो इट वाज ऑलवेज अ विश एंड अ डिज़ायर एंड एस्पिरेशन कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा. सो दैट इज़ हाउ आई यू नो एंडेड अप जॉइनिंग.
1: इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाए, उससे पहले अगर आपके जीवन की बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ना बचपन उसके जीवन में, आने वाली जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अगर आपके बचपन की बात की जाए, एज अ स्कूल किड, कर्नल विवेक चौहान जो उस वक्त सिर्फ विवेक थे, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस तरह के बच्चे थे?
0: तो मैं बेहद बदमाश बच्चा था, है ना. मतलब मेरे माँ बाप भी शायद मुझसे काफ़ी तंग थे और शैतानियाँ करने में और शैतान बच्चों के साथ रहने में मुझे अत्यंत आनंद मिलता था. यहाँ तक कि यू नो एज अ 5-year-old पूरी कॉलोनी के जो साइकिल्स के टायर, उस टाइम साइकिल्स होती थी सबके पास, तो उनके जो है वॉल निकाल के फिर उसके बाद बड़ी मज़ा आया उनको देख के कि सब चल रहे हैं, यू नो. सो मैं शैतान बच्चा था. पॉसिबली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तो थोड़ा सा और जो है डिसिप्लिन्ड हो गया और थोड़ा शांत हो गया. बट डेफिनेटली एज अ यंग चाइल्ड आई वाज नॉट एन आइडियल फॉर एनीबॉडी.
1: और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने, आपकी सर्विसेज ने, आपकी ट्रेनिंग्स ने, भारतीय सेना ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया.
0: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा. मैं NDA से हूँ और फिर IMA से पास आउट हुआ और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में नोन हैं, जानी पहचानी है, दैट दे टर्न मैन इनटू बॉयज इनटू मैन एंड डिसिप्लिन इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट. एंड यू नो वंस, जैसे मैंने कहा, एक बारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो स्वभाव में बदली, ऊपर से जो ये डिसिप्लिन की बाउंड्रीज थी इससे जो है आई हैव बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड और पॉसिबली अ बेटर पर्सन.
1: बिल्कुल. आपकी व्यक्तिगत रूप से बचपन से इंजीनियरिंग, यानी कि इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी भी क्यों ना हो, आर्म फोर्सेज उसे पूरी तरह से बदल देती है. हर पेज पुर्जे को अपने उचित स्थान पर जोड़ देती है. जिस तरह का ऑफिसर आपको बनाना है उस तरह का ऑफिसर बनाती है.
0: ये बिल्कुल आपने सही पहचाना. दी ट्रेनिंग अकेडमीज, ये विभिन्न किस्म के लोग अलग कल्चर, अलग बैकग्राउंड से लेते हैं एंड दे ट्रेन यू इन टू द फाइनेस्ट दैट द कंट्री प्रोड्यूसेस, समटाइम्स विद पेन, समटाइम्स विदाउट पेन, बट द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज गुड.
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से. तो पहले NDA, उसके बाद फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, क्योंकि एक साल का आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है. कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? क्योंकि कहते हैं कि बेसिक बिहेवियर नहीं बदलता है, वो अंदर शैतान बच्चा भले ही उसने आगे शैतानी ना की हो, लेकिन उसने जीवन का लुत्फ, जहाँ पर भी वो रहा, जो भी काम उसने किया, उसने ज़रूर उसको एंजॉय किया. और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, चाहे स्कूल में रहे, भले ही शैतान रहे, लेकिन जब आर्म फोर्सेज ज्वाइन की, भले ही सोचने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, पर जो अंदर का बच्चा था ना वो जीवित रहा और वहाँ पर भी उसने एंजॉयमेंट पूरा किया. तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आया?
0: सो व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया. जब हम NDA गए तो वी वर यंग स्कूल चिल्ड्रन, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम IMA पहुँचे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो कॉलेज बाहर अपना एजुकेशन करके हम

0: में ज्वाइन किए थे. सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कहानी सुनना, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल सर्कल्स में घूमना, दैट वाज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी फ्रीडम का एहसास थोड़ा ज़्यादा है. एंड देयरफॉर आई एंजॉयड माय स्टे इन IMA. नॉट दैट NDA में नहीं था, बट कंपैरेटिवली IMA वाज अ मच बेटर टाइम.
1: NDA एकदम स्कूल पास आउट करने के बाद ज्वाइन करते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप CDS का एग्जाम देने के बाद, या फिर वो जो NDA से जाकर फिर IMA ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे आते हैं जिन्होंने हो सकता है कि पहले आर्म फोर्सेस लाइफ ना देखी हो. एक बार और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो मैं सुन रहे होंगे जो चाहते होंगे बच्चे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से निकल कर ना आर्म फोर्सेस जाता है तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है. हम तो राजा हैं अब, लेकिन वहां जाके एकदम एंटायर डिफरेंट माहौल. आपके घर में भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का जो घर होता है वहां लाइफस्टाइल इतनी ईजी नहीं होती, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन. तो आपके लिए तो डिसिप्लिन से निकल कर डिसिप्लिन में जाना था, फिर भी क्या अंतर था कि एक शैतान सा बच्चा एकदम शांत शालीन ऑफिसर बन गया?
0: सो ये आपकी बात सही है कि क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, फादर फौज में थे, तो घर पे भी काफ़ी डिसिप्लिन का और तौर था. लेकिन एक ट्रांजिशन है नो, जब आप डिसिप्लिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, और जब आप अफसर बनने के बाद डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट एंड फेथ रहते हैं, जो आपके कंधों पे जो है सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, और आपके सहयोगी होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू आर यू नो यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर देम. सो वाइल डिसिप्लिन इज एवर प्रेजेंट, दोनों क्षेत्र में रहता है, लेकिन डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ यूनिक ट्रांजिशन, एंड दैट I think is the what training teaches you over 4 years, कि आप responsibility कैसे लेते हैं, decision making कैसे करते हैं, और आप कैसे जो है pressure को सहते हैं, उसमें कैसे react करते हैं. So I think that is the transition between you know before joining the forces and after joining the forces.
1: जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ. मैं बहुत समय से, जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी और मेरे दोस्त जब इंटरमीडिएट एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो काफ़ी बार कहते थे कि अंतिम पग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अंतिम पग इंटरमीडिएट एकेडमी देहरादून में स्थित, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो आधे से ज़्यादा लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और हम जैसे लोगों के लिए वो मंदिर है और हमारा सर झुक जाता है. अंतिम पग क्या है?
0: सो अंतिम पग इज दैट फाइनल स्टेप विच चेंजेस यू फ्रॉम अ केयर फ्री बिंदास अंडर ट्रेनी टू अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग ऑफिसर. कहने को तो वो एक सेकेंड का और एक कदम है, लेकिन दैट ट्रांजिशन इज वेरी वाइड. यू नो आप उस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और हर डिसीजन, हर जो आप सोच है वो आपकी बदल जाती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ लैंडमार्क इवेंट इन इन एक फौजी ऑफिसर के लाइफ में, जब वो ये ट्रांजिशन करते हैं.
1: वाह क्या बात है. उस दिन से समझ में आने लगता है कि देश की मिट्टी का मोल क्या है, और उसी का तिलक लगाकर आप कहना चाहते हैं कि हमने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया. केसरी फिल्म से आप ही की फरमाइश पर यह गाना हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं हम. और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी धड़कन होते हैं, वो हमारे दिल की बात कहते हैं. और जब एक ऑफिसर की दिल की बात एक गाना कहता है, तो समझ जाइए उसके लिए, उसकी सर्विसेज, उसके लिए सेना के क्या मतलब है.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा, हर एक एक शब्द इस बात का यहाँ पर परिचायक है, साबित करता है कि इनके लिए भारतीय सेना क्या मायने रखती है। कर्नल चौहान, आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं आपको तैयार करती हैं, लेकिन क्या जब एक ऑफिसर जब कमीशन्ड हो जाता है और जब उसको पोस्टिंग्स दी जाती हैं, जब उस पर कार्यभार सौंपे जाते हैं, तो जिंदगी जैसे 360 डिग्रीज टर्न लेती है, ऐसा होता है क्या?
1: जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा अंतिम पग, सो दैट अंतिम पग या लास्ट स्टेप जो है वो आपको ऑफिसर बना देता है, पर आप सही मायने में ऑफिसर तभी बनते हैं जब यू कैन कमांड एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर सोल्जर्स। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप यूनिट जाते हैं तो वहाँ विभिन्न किस्म के सोल्जर्स मिलेंगे आपको,

0: कुछ आपकी उम्र के होंगे, बिकॉज यू गेट कमीशन्ड एट 21, 22, 23 इयर्स ऑफ एज. सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज़्यादा होंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा होंगे. रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हो, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं. सो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योर सेल्फ इक्वल टू, इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोओगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था. एंड नाउ यू कम इन टू अ सिचुएशन वेयर देर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. अनसर्टनिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30, 35, 40, 50 पीपल. यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू यू नो डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन. So, you know, suddenly maturity is thrust on your shoulders, and this is a very interesting, very painful, and very necessary stage. आप तभी जब जब आपके soldiers आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं, they can approach you, आपके साथ train कर सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं. That is the day you truly become an officer.
1: और मुझे लगता है कि शायद ये वो एक क्षण होता होगा जहाँ पर आप स्वयं से लड़ते हैं. मैदान जंग में लड़ना तो अभी बाकी है, लेकिन यहाँ सबसे पहले लड़ाई खुद के साथ है.
0: बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू लीड, यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग. है ना, वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया. एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ टू प्रूव दैट यू आर as good as the troops that you lead, jinki command aapko di gayi hai. So ye pehli ladai aapke sath hai, because that hard work takes effort.
1: अभी आपने जितनी बातें मुझे बताई हैं, कहीं ना कहीं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया है. और अक्सर जब हम इन तीन शब्दों को देखते हैं तो ये मात्र शब्द नहीं रह जाते, इनका मायना, इनकी परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है. अगर मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूंगी तो बस वो यही कहेंगे, नाम नमक निशान. नाम नमक निशान क्या है?
0: सो दिस इज द इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ. जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रूप मेरी यूनिट के ट्रूप्स थे वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे. तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स हैं उन सब के से आए हुए थे. नागास थे, मीज़ोस थे, मणिपुरीज थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे. एंड अगर देखा जाए तो जो कश्मीर से है और जो नागालैंड से है, उसके बीच में देर इज़ नो अफिनिटी, देर इज़ नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है. लेकिन एक यूनिट में, एक टुकड़ी में होने के बनस्पत, बिकॉज यू ट्रेन टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू लिव टुगेदर, एंड समटाइम्स यू डाई टुगेदर, आपस में वो एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीवन व्यतीत करने के लिए, यू ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना, आपने नमक जो है एक दूसरे का खाया है. सो दैट इज़ द फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा ये फौज आपको सिखाती है. देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आँच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए. आप लड़ाई में, ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले. दैट इज़ वाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप, टुकड़ी, वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए. ठीक है, वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो. एंड इफ़ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो जो भी फॉर्मेशंस हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पे आँच ना आए. ठीक है, सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो, और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड देयरफॉर नाम नमक निशान.
1: जी, नाम नमक निशान.

0: जान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
1: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पे टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं, तो भटिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो 1.5-2 साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं। अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई। एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है। उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिजेंट वहाँ डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वाज इन अ मल्टीनेशनल यूनिट कॉल्ड द फोर्स मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे। तो एक एक प्लटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
0: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है? क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहाँ आप को दूसरे की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा?
1: सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। यू नो दिस वाज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था, और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें, उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड यू नो यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आवर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, its capabilities and what kind of people you know operate in that. So and you know on a matlab apart from training and all social events, games, mm-hmm. sports, isme bhi interaction hota tha, so this was a very unique experience and I think this kind of a cross cultural communication is very good for exposure and for displaying our capabilities to the world.
0: बहुत खूब। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
1: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में। एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहाँ पे भंगड़ा निकलता था। इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, खूब दबा के डांस और मजे लेते थे।
0: तो ये बात निश्चित है कि जब वो अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब चम्मा चम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें चम्मा चम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया।
1: हाँ जी, बाद में भी मिशन जब हम वहाँ से वापस आ गए।

0: ये बातें जो है काफी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटेंजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे।
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपकी यूनियन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल होना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जिया जाए और उसको खूब तहे दिल के साथ उसे एंजॉय करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: जी, आपने बहुत सही बात पकड़ी है।
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक दिन होता है, लेकिन उस एक दिन में पल कैसे चुराए जाए वो आप इनसे सीखिए। जिंदा दिली अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे भारतीय सैनिक के नौजवान या फिर वो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कार्यरत हैं, बस उन्होंने एक ही बात जानी है कि जीवन अमूल्य है और इस जीवन को ना आप जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कार्यभार को या फिर अपने उद्देश्यों को कभी भी आप अपने आप से दूर ना कीजिए, आप फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: वेलकम बैक संदिष्ट सोल्जर्स, आज के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर आप सभी के सामने रख रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत पल, जिस तरह से आपके लिए उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान। कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है। ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरी डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो थोड़ी गलती से हो गया। तो मैं लेबनान से वापस पहुंचा ही था, ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी, हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे। तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे, और उसमें से दो कैजुअल्टीज़ हो गई और दो हमारे साथी नहीं रहे। सो जब ये हुआ तो वहाँ ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज़ हो गए। तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूँ। जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो। तो वो आज ही निकालो का इफ़ेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट ईजी टू गेट। तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, 2 हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो मेघालय से, हमको बोला कूच करो, चलो पहुँचो। तो रीचिंग द्रास इन इटसेल्फ वाज एन एडवेंचर। वो क्या ट्रेन के गार्ड के कैबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो। लिफ्ट लेते लेते जो है हम द्रास पहुंच गए, 3-4 दिन लगे पर हम पहुंच गए। एंड इट वाज अ वेरी यूनिक टाइम। आपके शो में मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो हमारे साथी वहाँ आज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, और उनको भी जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स जब एक वैली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं, तो बड़ी बहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है। सो इट इज़ यू नो क्रेडिट टू all the soldiers of the Indian Army who did a very impressive job, and जो लोग वहाँ जाते हैं they will understand कि high altitude में उन heights पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है। वहाँ का एक interesting वाक्या सुनाता हूँ। तो मैं पहुँच गए हम, तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग locations में, तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर cover नहीं था, क्योंकि वो हमारा equipment वैसा था। तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह, जो सरदार जी थे। अभी हम जा रहे होते तो वहाँ हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे, तो मैंने भी हेलमेट पहना होता, फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी हुई थी। अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे

0: को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना, तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता। फिर पास में कुछ आवाज़ें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ़ देखता और मैं देखता उसकी तरफ, तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है और मैंने हेलमेट पहना हुआ। फिर वही कहानी उल्टा, फिर बेरे पहनो फिर हेलमेट। सो दिस वॉज यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स ऑल्सो।
1: पर ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का, कि जहाँ अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है।
0: या आई थिंक दिस इज द इथॉस विच वी आर ब्रॉट अप विद, है ना। एंड वाइल इट वॉज नॉट फनी दैट टाइम, टुडे इन हाइंडसाइट आई कैन लाफ ओवर इट एंड सो कैन जगतार।
1: जी बिल्कुल, जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे तो उनको ज़रूर हंसी आती होगी। लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग, कहूँगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए ही कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है, और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो और वापस अपने साथी को लेकर आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन में फतेह तो हासिल करनी ही करनी है, पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल, इफ़ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर, यू कैन डेफिनेटली सेक्रीफाइस फॉर योर कंट्री। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग।
1: जी, अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु, थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुंच गए, तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है, क्या बदलाव आते हैं?
0: मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माय प्रिंसिपल इज दैट देर इज़ वन लाइफ, एक ज़िंदगी है और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, है ना। ऐसा कोई चीज़ छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया। सो दैट इज़ वाई मैं अप्लाई किया, मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, 1.5 साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहाँ के लिए ऑपरेशन एरिया के लिए, तो वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया। सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है, और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे वैली में। सो पूरे कश्मीर घाटी, अलग अलग जगह जहाँ लोग जाते भी नहीं हैं, वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला। लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में, डिफ़िकल्ट एरियाज में, वहाँ पहुँच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स। देर आर मैनी जहाँ हम नहीं कर पाए, बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू डू at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that mere ko lagta hai in my career as a helicopter
1: pilot. क्या खूब, हमारे हम जो भी काम करते हैं उसमें एक सेटिस्फाइंग पॉइंट जरूर होता है, और आपके लिए सेटिस्फाइंग पॉइंट था जहाँ पर जीवन दान यानी कि जीवन बचाया, और अपने जीवन को जब हम उसका उसके बारे में नहीं सोचते हैं, और ऐसा सिर्फ एक आर्म फोर्स पर्सनल ही सोच सकता है कि जीवन को तो आप हथेली पे लेकर चलते हैं और इस उद्देश्य चलते हैं कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है।
0: और इसका यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन कमराटरी, जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए, ठीक है, इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क। तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था, कमांड कर रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअल्टीज हो गई, 2 आदमी हमारे उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था, बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता क्योंकि रोड दूर था।

0: तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट एरिया, और अगर यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ दैट कमराडरी, आपसी जो एक दूसरों के करने की जो ज़िद होती है जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए, लेकिन मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा. और वो आए ऐसी जगह पे आए जहाँ 200-300 मीटर दूर गोलियाँ चल रही थी, ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे खेत में पानी था, लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क ये किया. सो यू नो दिस इज़ पार्ट ऑफ द इथॉस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट फॉर ईच अदर देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ असिस्टेंस दैट वी गिव टू ईच अदर.
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना यहाँ पे भी.

0: you know, this is part of the ethos, this is part of the story of the Indian Army, that for each other there is a lot of risk, a lot of assistance that we give to each other.
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना, यहाँ पे भी एक तरह का एक्सचेंज है. आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए, कोई निर्णय लेते हुए, कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था. दिस ऑल बट इट रिवॉल्व्स अराउंड यू.
0: यस, एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स, टू योर कॉलीग्स, कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई. ठीक है, अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस. So that's a very strong feeling and that's a very strong ethos.
1: जी, इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे, जैसलमेर, दिल्ली, यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया. 23 साल बाद रिटायरमेंट. वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर. क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं? और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था, मुश्किल था? ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ कुछ छोड़ आया हूँ?
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज़्यादा मुश्किल था, और रिटायरमेंट से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था. एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे, देर इज़ अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं, उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट environment, from that us group se aap nikalna chahte hain, that is a very difficult decision. So it took me almost 3-4 months of sleepless nights to decide ki chhodu ya nahi chhodu. But finally jab maine choda, uske baad actually mujhe realize isliye nahi hua kyunki mere paas time nahi tha. I went to Indian Institute of Management Ahmedabad, एंड वो ख़त्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया. वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में. सो दैट जब तक मुझे जो रियलाइज़ होना चाहिए था, जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद, कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या कैसे हूँ, वो रियलाइज़ हो नहीं पाया. एंड यू आर राइट, वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर. आज भी आई फॉलो द सेम टाइमलाइन. सुबह उसी टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट.
1: जिस तरह से इंटर मिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर, यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर, फिर अपनी सर्विसेज देना, और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूँ, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, निश्चित रूप से. लेकिन मैं जानना चाहूँगी, व्हाट आर प्री मेच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो?
0: ओके, सो प्री मेच्योर रिटायरमेंट, बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज़ रिटायरमेंट, अप्लाइंग फॉर रिटायरमेंट और टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर योर मैंडेटरी सर्विस पीरियड और योर मैंडेटरी बॉन्ड पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड. परमानेंट कमीशनड ऑफिसर्स के लिए 20 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार सोल्जर्स के लिए अलग अलग रैंक पे टाइम निर्धारित है. सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन्स, बड़े सारे, इट्स अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस. And sometimes because of various compulsions or personal reasons, a man is forced to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization agrees on the justification ki ha aapki baat mein merit hai, they will let you go before your mandatory time. So that is what premature retirement is.
1: जी, बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं, एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के जरिए अपना प्यार आप तक बरसा रहे हैं. यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं. बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र शारीरिक मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है. तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. जय हिंद, जय भारत. तो आज भी जब इस तरह के संदेश

0: मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो. हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिले तारीफ है. संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबलपुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है. पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर जी से बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि. और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है. अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत. संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है. और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान, हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त. जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन्ड ऑफिसर तैनात हुए थे. तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक एफिनिटी हो जाती है,
1: नहीं
0: जैसे कि
1: बिल्कुल
0: जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई, सर ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होता है. अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी. आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे. तो क्या कहना चाहते हैं?
1: आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज़ उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते. अगर आपके घर के घर से पीस है, आपकी वाइफ जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफिकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है. सो दैट इज़ अ सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर द लेडीज, फॉर द वाइव्स ऑफ ऑल आर सोल्जर्स हु लेट देम गो, हु ग्लैडली लेट देम गो टू देयर फील्ड पोस्टिंग्स, फॉर देयर डिप्लॉयमेंट्स, फॉर देयर ट्रेनिंग्स, बिना रो धो के, बिना रकस क्रिएट करे हुए, बिना कंप्लेंट्स करे हुए, और उनकी एब्सेंस में अकेले घर संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखभाल करना, पेरेंट्स को देखभाल करना, सोशल एंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, दैट इज़ अ क्रेडिट टू द लेडीज, टू ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देम.
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमांडिंग ऑफिसर रही हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए.
0: वाह क्या बात है. तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं, रिटायर भी हो चुके होंगे, तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है. और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए. सो मैं यही कहना चाहूंगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड. बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि एक ही जिंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो इसके लिए जरूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पा लीजिए. हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, यू नो प्लीज बी प्राउड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, बिकॉज दे डू सैक्रिफाइस अ लॉट on your behalf, and they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country and for the people of this country. So support them, be proud of them, and that is how you can thank them for their services.
0: जी बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश. और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स पर्सनल से वो उनकी अर्धांगिनी है, स्पाउस हैं. तो हमारी ओर से आपको, आपके लिए ये गाना, और एक बार फिर से हम धन्यवाद

ना चाहते हैं कर्नल विवेक चौहान का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि वो ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है। तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाजत, होगी आपसे फिर मुलाकात।

0: Now we will be listening to a special program, Cheer for Bharat, with respect to 20th edition of Asian Games 2026 to be held in Japan.
1: तो आइए सुनते हैं एशियन गेम्स पर आधारित स्पेशल प्रोग्राम चीयर फॉर भारत।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईची नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटें। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी, क्योंकि जेवलिन भारत में

0: एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी कर रही है राष्ट्रमंडल खेलों में, वो बाहर रही थी। 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है। अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है, जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है। तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे। डेकाथलन में तेजस्वीन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है। तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
1: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था उसका एक्लेमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है। तो लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का एक्लेमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहा है।
1: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
0: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, अब नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक

0: मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से, उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
1: हाई जंप में
0: हाई जंप में, 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहाँ पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
1: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहां से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
1: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया। क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
0: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पर रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे 5th आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखती हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बहुत मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेक फुलटन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग फोर्थ प्लेस फिनिश जब हम लोग हॉकी में वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे, यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में, वो मदद करे एंड

0: डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
1: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम 5वें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां। तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है, और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ड मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए, हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह ही भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
2: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है 2 बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है,
1: जी।
2: और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जॉली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे।

0: जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो और एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस उस मोराल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊँगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आज ने कोया में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है। लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की
2: जी
1: शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी
2: जी
1: आला दर्जे का हो गया है। लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन, पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए। लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत की बात जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले PKL की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है PKL से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का PKL में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेन्स टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेन्स टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेन्स टीम का स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत

0: तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थीं। मुना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में
1: नहीं,
0: जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं। 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
1: जी बिल्कुल। ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो चार महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का। तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
0: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेन्स डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
2: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफ़ी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको। गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफ़ी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था। कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में। तो ये काफ़ी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह, दिया चताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहा है। तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफ़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है, हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था जैसे आपने जिक्र किया। तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
0: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना?
1: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है। और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
0: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
2: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है। लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे हैं लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे। क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
0: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे तालियां जरूर बजाइए

0: हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मुना पार्थ सारथी आपका, सायंतन मोइत्रो आपका बहुत बहुत आभार।
1: शुक्रिया आनंद।
2: थैंक यू सो मच।
0: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: Rainbow 101.9.
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
2: अफवाहों से,
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति,
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM

0: रेनबो 101.9 पर सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।
2: FM रेनबो 101.9।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: को तन्हाई में नहीं मारती बल्कि ये इबरत का निशान बना देती है। जो शख्स दूसरों को परेशान करता है, दूसरों के लिए मुसीबतों का बास बनता है, तो वो भी एक ना एक दिन परेशान हो जाता है और उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई ताकतवर है और कमज़ोर को दबा रहा है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि कल वक्त बदलेगा और कमज़ोर ताकतवर हो जाएगा। फिरौन, जिसने खुदाई का दावा किया था, वो डूब गया। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब वक्त बदलता है तो फिर जालिम को भी अपने जुल्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। मकाफात अमल में इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाता है। कहते हैं कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस कर रह जाता है। नफ्सियात कहती है कि जुल्म और मनफी सोचें इंसान के जिस्म को अंदर से खोखला कर देती हैं। लाइलाज बीमारियां अक्सर मकाफात अमल की शक्ल में जाहिर होती हैं, जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं मिलता। जिसने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर लोगों को परेशान किया, वो आने वाले वक्त में खुद परेशान होगा और दुनिया में तन्हा रह जाएगा, और यही सबसे बड़ी सजा होती है। मकाफात अमल की जब बात हो रही है, तो एक खूबसूरत सा शेर यहाँ पर याद आ रहा है कि एक शायर ने बहुत ही खूब कहा था, अजल से है मकाफात अमल का सिलसिला कायम, अजल से है मकाफात अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मे तर होगा। तो अगर आपने भी किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के साथ जुल्म किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो आज ही अपने आप से माफ़ी मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी ज्यादतियों का एतराफ़ करें और जिसके साथ जुल्म व ज्यादती की है उससे भी माफ़ी मांग लें, ताकि आप आने वाले वक्त में अपने किए की सज़ा ना भुगत सके। इससे पहले कि मकाफात अमल का चक्कर पूरा हो और तेज़ी से ये आपकी तरफ आए, माफ़ी मांग लेना और तलाफी कर लेना बेहतर है। कुदरत का उसूल सादा सा है, जो बांटोगे वही दुगना होकर वापस मिलेगा, चाहे फिर वो खुशियां हो या फिर दुख हो।
1: सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे हरफे ताबिंदा। वाकई बहुत ही हिकमत और नसीहत की बातें मकाफात अमल के मुतालिक मोहतरमा आयशा बतूल से हमने सुनी है। जी हाँ, जो हम करते हैं वही हमें वापस लौट कर मिलता है। तो जितना हो सके दोस्तों, हमें अच्छाई फैलानी होगी और अच्छे काम करना होगा, क्योंकि वही वापस लौट कर हमारे पास आने वाला है।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो।

दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शायरी एक एहसास का नाम है जहां दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। सामईन, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार मुशायरा, तो सुनना न भूलें।

0: गजल सिर्फ उल्फत। बहुत शुक्रिया। इसके दामन में कहीं नफरत नहीं, सिर्फ उल्फत का बयां। मेरी गजल आखिरी शेर है कि जुल्मतों का जिक्र, जुल्मतों का जिक्र मुझसे होगा नहीं, जुल्मतों का जिक्र मुझसे होगा नहीं। रोशनी की दास्तां मेरी गजल, रोशनी की दास्तां मेरी गजल, अहले हक के वास्ते। जी बहुत शुक्रिया। के मुख्तार्ज करता हूँ कि अहले हक के वास्ते देखो जिगर, अहले हक के वास्ते देखो जिगर, राहे हक की पासबाँ मेरी गजल, राहे हक की पासबाँ मेरी गजल, रोज़ो शब की तर्जुमा मेरी गजल, हौसलों का एक बयां मेरी गजल।
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: जनाब रफ़ीक जिगरी साहब जो अपना मुरस्सा कलाम पेश कर रहे थे। अब आइए हम चाहते हैं ख़ाज़ी अज़मतुल्लाह जाफरी साहब की तरफ, जो बहुत ही मुमताज़ और मरूफ शायर हैं हैदराबाद के। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें।
2: जी, बहुत शुक्रिया
1: ख़ाज़ी अज़मतुल्लाह जाफरी।
2: जी, मतलब का शेर है, मेरे लिए दरअसल ये शोहरत की बात है, मेरे लिए दरअसल ये शोहरत की बात है, वो मुझको याद करते हैं हैरत की बात है, वो मुझको
1: अच्छा
2: याद
1: क्या
2: करते हैं हैरत की बात है,
1: कहें।
2: ये दर्स बंदगी का ही एक जुज है साहिबो, ये दर्स बंदगी का ही एक
1: एक
2: जुज
1: जुज
2: है
1: है
2: साहिबो,
1: साहिबो।
2: इज्जत बड़ों की करना ये इज्जत की बात
1: वाह
2: है, इज्जत बड़ों की करना ये इज्जत की
1: क्या
2: बात है, साबित कदम रहोगे तो मंजिल को पाओगे,
1: बात है
2: साबित कदम रहोगे तो मंजिल
1: मंजिल
2: को
1: को
2: पाओगे,
1: पाओगे।
2: मंजिल से जी चुराना ये गफलत की बात
1: वाह
2: है,
1: वाह वाह
2: मंजिल से जी चुराना ये गफलत की बात
1: वाह।
2: है।

0: ज्यादा ये भी मुरव्वत की बात है, हद से ज्यादा ये भी मुरव्वत की बात है। वो सबसे कह रहे हैं हमें जानते नहीं, वो सबसे कह रहे हैं हमें जानते नहीं, ये तो जरूर हमसे अदावत की बात है, ये तो जरूर हमसे अदावत की बात है। कदमों में जिसके खुल्द है वो माहे दोस्तों, कदमों में जिसके खुल्द है वो माहे दोस्तों, माँ की हर एक बात में जन्नत की बात
1: बात
0: है, माँ की
1: क्या
0: हर एक बात में जन्नत की
1: बड़ा अच्छा
0: बात
1: शेर है।
0: है। वादे तमाम करने को किस्तों में हम मरे, वादे तमाम करने को
1: किस्तों में
0: किस्तों
1: हम
0: में
1: मरे,
0: हम मरे, ये भी हमारे हक में मोहब्बत
1: बात
0: की
1: की बात
0: बात
1: है।
0: है,
1: अरे
0: ये भी हमारे हक में मोहब्बत की बात है। मकता है अल्फाज सब गजल के।

0: अजमत की बात है
1: अरे
0: हमको गजल में बांधना, अजमत की बात है हमको गजल में बांधना, अजमत की बात है। बेहद मशहूर हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो का, हमारे अदब सादिक के सदर जनाब फरीदुद्दीन सादिक साहब का बेहद मशहूर हूँ,
2: जज़ाकअल्लाह। बहुत बहुत आइए हजरत क़िबला सामेईन इकराम, अब हम चलते हैं ज़हूर ज़हराबादी साहब की तरफ, आइए ज़हूर ज़हराबादी को सुनिए।
3: बहुत शुक्रिया जनाब नाज़िम मुशायरा ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब। चलिए एक गजल मतला मुलाहिज़ा फरमाए जावी साहब के, छुप छुप के हमें आप इधर देख रहे हैं, छुप छुप के हमें आप इधर देख रहे हैं, हम आपका ये हुस्न नजर देख रहे हैं, हम आपका ये हुस्न नजर देख रहे हैं, और ये हुस्न के जलवों को चुराती हुई आंखें,
1: क्या कहने, क्या कहने।

0: हम आज ये आंखों का हुनर देख रहे हैं, हम आज ये आंखों का हुनर देख रहे हैं, और जाहिर तो ये करते हैं कि नाराज है मुझसे,
1: जाहिर तो ये करते हैं
0: कि नाराज है मुझसे, चुपके से मुझे फिर भी मगर देख रहे हैं, चुपके से मुझे फिर भी मगर देख रहे हैं। और ये जो शेर है गिरा बन शेर है सदर मोहतरम की, मैं दाद चाहूंगा कि हैं सब ही सरे बज्म तुझे देखने वाले, हैं सब ही सरे बज्म तुझे देखने वाले, हम देखने वालों की नजर

देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और हालात हजरा पर मैंने कोशिश देखिए, जिस मुल्क को सींचा था कभी अपने लहू से, जिस मुल्क को सींचा था कभी अपने लहू से, उस मुल्क में नफरत का असर देख रहे हैं, इस मुल्क में नफरत का असर देख रहे हैं। और गजल का आखिरी शेर मुलायजा फरमाए कि जिन लोगों को भी मेरी मुसाफत पे गुमा है, जिन लोगों को भी मेरी मुसाफत पे गुमा है, चेहरे पे मेरे गर्दे सफर देख रहे हैं, चेहरे पे मेरे गर्दे सफर देख रहे हैं। मख्ता मुलाजा फरमाए कि जो अहले बसीरत है, खाजी साहब, जो अहल

दिल मोम का पत्थर का जिगर देख रहे हैं, दिल मोम का पत्थर का जिगर देख रहे हैं, छुप छुप के हमें आप

0: हूं मैं और ये शेर कि मुझको हालात से डराते हो, ये न समझो कि डर गया हूं मैं। मुझको हालात से डराते हो, ये न समझो कि डर गया हूं मैं। और ये देखिए तरकीब के, शाम क्या रात क्या सुबह क्या है, शाम क्या रात क्या सुबह क्या है, उनके घर दोपहर गया हूं मैं। और राह सुनसान हो या हश्र बपा, हर जगह बेखतर गया हूं मैं, हर जगह बेखतर गया हूं मैं। और मकता कुछ यूं है कि हमसे जावेद इतने बरहम हैं, हमसे जावेद इतने बरहम हैं, अपनी नजरों से गिर गया हूं मैं, अपनी नजरों से, अपनी नजरों से गिर गया हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामाईन हजरत, आप समात फरमा रहे थे जावेद नसीम साहब को, जो कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, कई खूबियों के मालिक हैं। आइए अब उनकी बारी आती है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 20,000 पर मुश्तमिल अशायर की इन्होंने गज़ल लिखी है और 40 से ज़्यादा किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं और कई डिग्रियों के मालिक हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब को मैं अपने ही इन अशार से दावत कलाम दूंगा, जो कि 70 साल नौजवान शायर हैं, कि मैं अपनी इन अशार से उन्हें दावत कलाम दूंगा कि बूढ़ा होकर भी शजर साया हमें देता है। शाख से टूट के पत्ते तो बिखर जाते हैं, शाख से टूट के पत्ते तो बिखर जाते हैं, और बदतमीजी पे उतर आते हैं जिनके बच्चे, मौत से पहले ही माँ बाप वो मर जाते हैं। आइए अब आपके रूबरू हैं जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब को समात फरमाएं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा जनाब ज़ोर ज़हराबादी साहब का। चार मिसरे यूँ हैं कि आते जाते रहा कीजिए,
3: अच्छा
2: आते जाते रहा
3: क्या
2: कीजिए, दिल की बातें किया कीजिए।
3: वाह।
2: आते जाते रहा कीजिए, दिल की बातें किया कीजिए, ये खामोशी का मतलब है क्या, ये खामोशी का मतलब है क्या, कुछ कहा कुछ सुना कीजिए, कुछ कहा कुछ सुना कीजिए। एक गजल के चंद शेर के अर्ज किया कि पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते, पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते, वो गम से निमटने का सलीका नहीं रखते। पत्थर का जो सीने में कलेजा नहीं रखते, वो गम से निमटने का सलीका नहीं रखते। हर हाल में हम रहते हैं खुश, देखिए साहब, हर हाल में हम रहते हैं खुश, देखिए साहब, हम दिल में किसी शय की तमन्ना नहीं रखते। हम दिल में किसी शय की, बहुत बहुत शुक्रिया, हम दिल में किसी शय की तमन्ना नहीं रखते। अर्ज किया है कि बौनों में सिमट जाते हैं बौनों की तरह हम, कहते हैं कि बौनों में सिमट जाते हैं बौनों की तरह हम, बौनों में सिमट जाते हैं बौनों की तरह हम। दानिश्ता मियाँ खुद को हम ऊंचा नहीं रखते, दानिश्ता मियाँ खुद को हम ऊंचा नहीं रखते। और एक शेर इसमें इस तरह से हुआ है कि रखने को तो रखते हैं बहुत डिग्रियां सादिक, रखने को तो रखते हैं बहुत डिग्रियां सादिक, पर सबको बताने का इरादा नहीं रखते, पर सबको दिखाने का इरादा नहीं रखते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हजरत गिरामी। अभी अभी आप फरीदुद्दीन सादिक से उनका कलाम सुन रहे थे। अब आइए बारी आती है जनाब अत एजाज साहब के, जो सारे हिंदुस्तान में अपनी एक शिनाख्त बना चुके हैं। इनका एक आलमी रिकॉर्ड भी है कि ये 13 दिन तक मुसलसिल निजामत कर चुके हैं। मैं आतिब एजाज साहब को, सदर अली बुखार को बड़े अदब और एहतराम से आज की दावत देता हूँ।
3: बेहद शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब का और तमाम मौजूद शोरा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तालिब इल्म को मनसब सदारत पे विराजमान किया। बेहद शुक्रिया। मैं दो गज़लों से मुंतखब शेर पेश करना चाहता हूँ। पहली गज़ल के मुंतखब शेर यूँ हैं कि मतला है खाजी साहब के, समातों में जहाँ लफ्ज कुन फका गुजरा, समातों में जहाँ लफ्ज कुन फका गुजरा, हर एक शय में उसी दम शऊर जहाँ गुजरा, हर एक शय में उसी दम शऊर जहाँ गुजरा। और मतला उसने मतला है कि नजर से जब भी मेरी मंजरे जिया गुजरा, नजर से जब भी मेरी मंजरे जियां गुजरा, जुनू से आगे खिरत का मेरी धुआं गुजरा, जुनू से आगे खिरत का मेरी धुआं गुजरा। اور یہ شعر

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम इन नहरंग FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस स्टूडियोज की घड़ी में 10:07 हो चुके हैं। अब वक्त हुआ चला है सुरीले गीतों से सजे प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जागा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे पुराने हिंदी फिल्मी गीत और साथ ही साथ बात करेंगे आज के खसूसी मौजू यानी मरीजों की हिफाजत का। आलमी दिन जो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, इस उनवान पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको सुनाएंगे पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जी हाँ, मरीजों की हिफाजत का आलमी दिन जो हर साल 17 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का बुनियादी मकसद अस्पतालों और इलाज के दौरान मरीजों की हिफाजत के बारे में बेदारी पैदा करना और तिब्बी गलतियों से बचना है। तो दोस्तों, इस मौजू पे और भी हम बात करेंगे। आइए सुनते हैं हमारी इस बज़्म का पहला खूबसूरत सा गीत कुमार सानू की आवाज़ में, जिसके बोल हैं एक दिन आप, जो कि लिया गया है फिल्म यस बॉस से।

दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम मरीजों की हिफाजत के आलमी दिन पर, जी हाँ, इस दिन का मकसद मरीजों को इलाज के दौरान अस्पतालों में गलतियों और नुकसान से बचाना है। या यूँ समझिए कि जो तिब्बी गलतियाँ होती हैं उसको रोकना। जी हाँ, अस्पताल में गलत दवा मिलने, गलत ऑपरेशन होने या सफाई ना होने की वजह से मरीजों को जो नुकसान पहुँचता है उसे रोकना। इसके साथ साथ डॉक्टर और मरीज का एक दूसरे के साथ आपस में खुलकर बात करना जरूरी है ताकि इलाज में कोई गलती ना हो। इसके अलावा दुनिया के हर इंसान को अस्पताल में महफूज और बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए। और जैसा कि इलाज ऐसा होना चाहिए कि सबसे बड़ा पैगाम तो यह है कि इलाज ऐसा हो जिसे मरीज को फायदा पहुंचे, ना कि नुकसान। तो ये जो आलमी दिन है, ये इसकी जो शुरुआत है, सबसे पहले जो हुआ है इसका आगाज़ वो है आलमी इदारे सेहत की जानिब से 2019 में किया गया था। दुनिया भर में लोगों को इस बात से आगाह करना कि इलाज के दौरान मरीजों की हिफाजत सबसे अहम है। ये दिन ज़रूरी भी है क्योंकि अस्पतालों में अद्वियात की गलती, गलत तशखीस या देखभाल में कमी की वजह से मरीजों को होने वाले नुकसान से बचाना। इसके साथ साथ मरीजों, डॉक्टरों और हुकूमतों को मिलकर काम करने की तरगीब देना ताकि इलाज का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। मरीज और घर वालों का तावुन, जी हाँ, अगर दवा या इलाज समझ ना आए तो डॉक्टर से शर्माए बगैर पूछे, सवाल पूछे, सच बताएं। डॉक्टर को अपनी जो पुरानी बीमारियां हैं, जो एलर्जी है, उसके बारे में सब कुछ सच बताएं। अगर कोई नर्स गलत दवा दे रही हो या नाम गलत पुकारे तो फौरन उनको वहीं पर बोलना चाहिए। इसके साथ साथ सफाई का ख्याल भी, जी हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है। अस्पताल में जरासीम से

बचने के लिए बार बार हाथ धोए। दोस्तों, इस मौजू पर हम मजीद और भी बातें करेंगे आपसे। यूं ही आइए सुनते हैं अगला गीत, कुमार सानू और अगला अलका याग्निक की आवाजों में है, और ये गीत के बोल है तेरी मोहब्बत ने, और ये लिया गया है फिल्म रंग से।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

FM 109.5 MHz पर आप सामयिन सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नेरंग स्टूडियोज़ की घड़ी में 10:27 और 56 सेकेंड्स हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं मरीजों की हिफाजत के आलमी दिन उन्वान पर, जी हाँ, ये सिर्फ 3 आसान बातों का नाम है। जी हाँ, सबसे पहले इलाज से फ़ायदा हो नुकसान ना हो, दूसरा मरीज क्या करें और तीसरा डॉक्टर क्या करें। तो आइए सबसे पहले हम जाने कि इलाज से फ़ायदा हो नुकसान ना हो। जी हाँ, अस्पताल जाने का मकसद बीमारी ठीक करना होता है। ये दिन याद दिलाता है कि इलाज के दौरान डॉक्टर की किसी गलती या लापरवाही से मरीज को कोई नया नुकसान या नई बीमारी नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ मरीज को क्या करें, जी हाँ, जब भी डॉक्टर दवा लिखे तो मरीज को चाहिए नाम और जो है उसका तरीका जो है अच्छे से पूछ ले। अगर कोई दवा समझ ना आए तो शर्माए बगैर दोबारा पूछे। अपनी पुरानी बीमारियां या एलर्जी जो भी हो डॉक्टर को खुद बताएं। अब डॉक्टर क्या करे, जी हाँ, मरीज का मुआयना पूरी तवज्जो से करे ताकि गलत इलाज ना हो। अस्पताल में जरासीम से बचने के लिए मरीज को चाहिए कि बार बार अपने जो हाथ होते हैं उसकी साफ सफाई का ख्याल रखे। डॉक्टर और मरीज दोनों चौकन्ना रहेंगे तो इलाज बिल्कुल महफूज रहेगा। तो दोस्तों इस मौजू पर आगे हम और भी आपसे बातें बताएंगे। आइए सुनते हैं अगला गीत अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंगी, सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम, गीत सुरीले गाता जा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं मरीजों की हिफाजत के आलमी दिन पर, जी हाँ, इसका जो असल मसला है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप एक मरीज़ को अस्पताल ले जाते हैं और दो नाम के एक ही मरीज़ होते हैं और एक मरीज़ को बुखार होता है और दूसरे को जो है ना दिल का मर्ज़ होता है। अगर नर्स ने जल्दी में नाम अच्छी तरह चेक नहीं किया तो जो बुखार वाले मरीज़ की दवा है वो दिल वाले मरीज़ की दवा को मिल सकती है। तो यही वो ख़तरा है जिसे रोकने के लिए ये दिन मनाया जाता है, यानी इलाज के दौरान ऐसी किसी भी गलती से मरीज़ को बचाना। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह से जो है ना ये जो गलतियाँ होती हैं उससे बचे। इसके अलावा अस्पतालों को ये हुक्म भी दिया जाता है कि वो मरीज़ की जान बचाने के लिए जो है ना सख्त पहरा दे। सबसे पहले सही मरीज़ को सही दवा दे। हर बार गोली देने या इंजेक्शन लगाने से पहले मरीज़ का नाम दोबारा चेक किया जाए। इसके अलावा जरासीम का जो खातिमा होता है, अस्पतालों में सबसे ज़्यादा बीमारियां गंदे हाथों से फैलती हैं, इसलिए डॉक्टरों को कहा जाता है कि मरीज़ को छूने से पहले और बाद में हाथ लाजमी धो ले या सैनिटाइज़र लगाए। डॉक्टर नर्स को ज़ुबानी दवा का नाम ना बताए बल्कि पर्ची पर साफ साफ लिख कर दें ताकि सुनने में गलती ना हो। अगर मरीज़ ऑपरेशन के बाद बेहोश या इसे चक्कर आ रही हो तो उसके बिस्तर के किनारे बंद कर दे ताकि वो नीचे ना गिर जाए। जो ये जो आलमी दिन है हिफाजत का, तो हर साल जो है ना ख़ास थीम यानी मौजू के तहत मनाया जाता है। तो 2026 का जो है वो लंबी बीमारी

से तहफुज। जी हाँ, पूरी दुनिया के डॉक्टरों का पूरा जो ध्यान है उन मरीजों पर है जिनका इलाज साल साल चलता है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज, जोड़ों के दर्द और कैंसर के मरीज। चूंकि ये मरीज रोजाना 5 से 10 अलग अलग गोलियां खाते हैं, इसलिए उनकी दवाइयों में मिक्सिंग होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस साल का मकसद उनके इलाज को आसान और महफूज बनाना है। दोस्तों, और भी बातें हम इस मौजू से मुतालिक आपसे बताएंगे। आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, जो कि लिया गया है फिल्म गुलाम से।

दोस्तों, आज की जैसे कि हम खसूसी दिन यानी कि मरीजों के आलमी तहफ़ुज़ के आलमी दिन पर बात कर रहे थे, बस हाँ, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बीमार होने की सूरत में सिर्फ पांच सुनहरी उसूलों को अपना लें। जैसा कि जब भी आप या आपका कोई रिश्तेदार अस्पताल जाए तो

उसके आलमदिन पर बात कर रहे थे। बस हाँ, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बीमार होने की सूरत में सिर्फ पांच सुनहरी उसूलों को अपना लें, जैसा कि जब भी आप या आपका कोई रिश्तेदार अस्पताल जाए तो ये पांच काम कभी ना भूले। सबसे पहले, डॉक्टर साहब, ये जो दवा आपने लिखी है ये किस बीमारी के लिए है, ये जरूर पूछें। और जब नर्स इंजेक्शन लगाए तो देखें कि क्या वो नई सुई का इस्तेमाल कर रही है, तो ये चीज़ को जो है चेक कर ले। और अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो डॉक्टर को बार बार याद दिलाएं। वक्त भी नोट करें, क्योंकि कौन सी दवा सुबह खानी है और कौन सी दवा रात को, तो इसका जो चार्ट होता है वो बनाकर घर की दीवार पर लगाएं, तो ये हमारे लिए याद दहानी हो जाएगी। इसके अलावा, अगर आपको जो है लगे कि ड्रिप बहुत तेज चल रही है या फिर मरीज की जो तबीयत है वो एकदम बिगड़ गई है, तो फौरन नर्स को आवाज़ दें। तो इलाज में हिफाजत तभी आती है जब डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और मरीज बेदार होकर अपने जो हुकूक होते हैं उसके बारे में सवाल पूछे। तो हमारे जो सुनने वाले सभी सामईन हैं, इन पांच सुनहरी उसूलों को आपने नोट कर लिया होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में है, और ये लिया गया है फिल्म तेरे नाम से।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। अभी आप समाप्त कर रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। आइए बज्म के इख्तिताम से कबल सुनते हैं पयाम-ए-शब। तहरीर व पेशकश है नदीम अख्तर जैदी।

समय अभी आपने समाप्त किया पयामे शब। इसी के साथ आज की हमारी उर्दू की नैरंग बज्म यहीं पर इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल इन्हीं मीटर्स पर रात 9:30 पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब ख़ैर। जय हिंद।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार नश्र किए जाएंगे।

0: मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें

0: सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्ले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
0: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू.

0: To Amit, yes, let's begin with the headlines. In Indian stock market, Sensex ends on flat note. Nifty settles above 23,250. US lawmakers pass package of sanctions targeting Russia and Iran's key economic pillars. New Delhi says India remains firmly committed to ensuring energy security and will continue to do so through diversified sourcing. And country's semiconductor ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. निफ्टी 23,250 के स्तर से ऊपर दर्ज. अमरीकी कानून निर्माताओं ने रूस और ईरान के मुख्य आर्थिक आधार पर प्रहार करने के लिए प्रस्ताव पास किया. भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति करना जारी रखेगा. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सेमी कंडक्टर वातावरण तेजी से मजबूती की ओर नवाचार, निवेश और विकास की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.

0: And before we move any further, here's a disclaimer for our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर घरेलू शेयर बाजार में आज आम तौर पर खास बदलाव नहीं नजर आया बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग पूरे स्तर पर बना रहा जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली बढ़त से बंद हुआ सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर दर्ज हुआ जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ एनएसई मिडकैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई हालांकि कारोबार की शुरुआत में अमरीकी फेडरल रिजर्व के रुख और वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता के कारण बाजार दबाव में नजर आए बाद में दोनों सूचकांक संभल गए और बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए
0: इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे सेंसेक्स एंडेड लार्जली अनचेंज्ड व्हाइल निफ्टी क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट सेंसेक्स डिप्ड 22 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,315 निफ्टी एडेड 53 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,271. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained 0.9%, while the Small-Cap 100 Index added 0.8%. Earlier, the markets opened mildly lower after a hawkish stance from the U.S. Fed Reserve and concerns over geopolitical developments. However, both the indices soon recovered and traded with gains for most of the volatile session, supported by value buying.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई मजबूती वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.8% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.4% और इंडिगो 2.3% की बढ़त से बंद हुए हालांकि एचडीएफसी बैंक 1.3% टाइटन 1.1% और आईसीआईसीआई बैंक 1% की गिरावट से बंद हुए
0: Let's take a look at the sectors now. Well, in the sectoral indices on the BSE, 18 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, insurance advanced 3.2%, capital goods jumped nearly 2%, and industrials gained 1.5%. In contrast, top 10 banks declined 0.7%, private banks index shed 0.6%, and Bankex dropped 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,686 companies advanced and 1,642 declined and 207 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ प्रकाश किस तरह से आंकते हैं बाजार में एक तरफ तो ये भी नजर आता है कि अगर तकरीबन 2,700 कंपनियां आज अगर बीएसई की हम बात करते हैं तो वो मजबूती की तरफ थी जबकि तकरीबन 1,650 कंपनियों में आज दबाव नजर आया या गिरावट नजर आई लेकिन फिर भी सेंसेक्स अपने स्तर के आसपास ही दर्ज हुआ वैश्विक परिस्थितियों का कारण था अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो अनाउंसमेंट की है उसका असर था या अभी भी जो अमेरिका ने नए

0: जो टैरिफ लगाने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, ये उसका असर है?
1: नहीं, खास तौर पे आम तौर पे जो ज्यादा संभावना है कि क्या रहा होगी, किस तरह के कारण रहे होंगे कि आज की मार्केट की जो परिस्थिति है उसमें वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वही हावी रही इस पे। चूंकि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 25 बेसिस पॉइंट से, वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेड था, वो एक तरह का डिस्काउंटेड था। 90% लोग वैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि उसकी मीटिंग से बढ़ेंगी और तो डिस्काउंटेड था, इसलिए कोई मार्केट में बहुत बड़ा ना उछाल को अदला बदली नहीं हुई, एक तरह का एक्सपेक्टेड ही था। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो तो पिछले कई दिनों में हालात तो खराब ही हुए थे, तो अब उस चलते क्योंकि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो चुकी थी थोड़ी बहुत। ये जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन था एक तरह का क्या होता, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द वे नाउ कि कम से कम मालूम पड़ गया 25 बेसिस पॉइंट है। हालांकि जैसे लालिमा जी ने वो कहा कि फेडरल रिजर्व का टोन अभी भी हॉकिश है, हॉकिश के मायने ये हैं कि अभी भी हम इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन वहाँ अभी भी जो महंगाई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और महंगाई अमेरिका क्या पूरे संसार में दिक्कत हो रही है, तभी इंटरेस्ट रेट जिसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसके मायने यही है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट। पिछली कार्यक्रम में मैंने कहा था कि वो जो पार्टी टाइम था ना, लोअर इंटरेस्ट रेट वाला, ईजी मनी वाला, द पार्टी टाइम इज ओवर, तो उसके चलते ये सब वैश्विक परिस्थितियां जा रहे हैं जो आज के मार्केट को एक तरह का ब्रीफली बताएं तो ये है।
2: Why do we see a bit of a dichotomy? Sensex is largely unchanged, but Nifty ends on a positive note.
1: It's a funny thing. I think it should not have happened because what has happened is a new system, what's called CAS, has been introduced for over a month now in the Indian market. It's still in the trial stage. And it throws this kind of surprises now and then. And then finally, when the fine-tuning is done, you find a different thing. But it is quite confusing and the traders are concerned about it. They have conveyed their concerns to the market regulator, SEBI. And let's hope this is sorted out.
2: For people who want to invest in the stock markets, is this the right time? Because for a change, we see, as they say, no news is good news. Or should we wait and watch? Because as you said, markets don't like uncertainty. Now, it's the certainty is that there is, you know, uncertainty in a way.
1: I'll tell you what, when it comes to Indian investors, there is one channel which always remains open now, what is called systematic investment plan, what is SIP to, so to speak,
2: right,
1: which is done through mutual fund. Something like 30,000 crores of rupees is mopped up every month through SIP. And a lot of these professionals, young professionals, are committed to that. It is only because of that commitment that mutual funds or DIIs are able to mobilize that kind of amount. And this is the amount which is providing stability to our market.
0: Right. तो प्रकाश, क्या इसके क्या ये मायने माना जाए कि भारतीय जनमानस या भारत का जो घरेलू निवेशक है उसको अपने बाजार की क्षमताओं पर, उसको अपने बाजार की स्थिरता पर पूरा भरोसा है, बाजार अगर गिरता है या उठता है, लेकिन वो जो निवेशक है जो सतत निवेश कर रहा है, निरंतर निवेश कर रहा है, वो छोटी छोटी मात्रा में ही सही, वो निरंतर निवेश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका निवेश सुरक्षित है और उसको उस निवेश पर एक निश्चित आय जरूर होगी।
1: देखिए क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में है वो बड़ी मैच्योर हो गई। अब हमारे यहाँ इतनी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, और इनकी एक संस्था है एमफी बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया हुआ है एड कैंपेन बड़े सालों से जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है उसमें जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं उस हिसाब से वो लोग अपना टोन एंड टेनर चेंज करते हैं, तो वो दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सेंड दिस मैसेज कि भाई मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म टिकना पड़ेगा।
0: वहां पे मतलब पेशेवर लोग हैं जो प्रोफेशनल,
1: जो आपको
0: है?
1: प्रोफेशनल है, जो 30,000 करोड़ रुपए आता है वही इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे
0: जी।
1: तो यहाँ का जो रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो उसको भी ये चीज उसने विश्वास कर लिया है कि
0: और म्यूचुअल फंड कंपनियां इस विश्वास पे खरा भी उतर रही हैं।
1: नहीं, वो कहना अभी जल्दबाजी।

0: चलिए, अगर हम
1: वो अभी
0: बात
1: कहना जल्दबाजी
0: जी अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करें, उसमें तकरीबन आज लगभग 1% की मजबूती भी नजर आई है। क्या ये माना जाए? जो सेंसेक्स पैक तो चूंकि छोटा है, और अगर निफ्टी 50 की भी बात करें, वहां पे भी उतनी ज्यादा कंपनियों का समावेश नहीं है। तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, जो चूंकि बड़ा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां पे लोगों की उम्मीदें हैं और वहां पे बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है, इसलिए उसमें तेजी हुई।
1: देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप और वर्सेस लार्ज कैप जिसको बोलते हैं,
0: जी
1: जो बड़ी जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है, जो टॉप कंपनीज हैं, 100 टॉप कंपनी लार्ज कैप्स में आती है। पिछले दिनों में, कुछ महीनों में, मिड कैप और स्मॉल कैप ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इन पे स्पेशलाइज करते हैं, उन्होंने भी अच्छी रिटर्न दी है। कारण ये है कि एक तो जो ग्रोथ होता है, जो ऑलरेडी कंपनी बड़ी लार्ज हो चुकी है, उसकी ग्रोथ रेट उतनी अच्छी कई बार नहीं हो पाती, क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप जो कंपनीज है, अभी ग्रोथ उसमें एपिटाइट है, भूख है, उसमें आगे बढ़ने की भूख है, और वो फिर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है उसमें। तो जैसे सिचुएशन आती है, एक लेगेसी बेस इश्यूज नहीं रहते उसमें, एंड दैट्स द रीजन। और एक और रीजन है कि जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली देवर इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप्स। सो व्हेन देवर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड द मनी वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ द लार्ज कैप्स, स्मॉल एंड कैप्स वर नॉट दैट मच अफेक्टेड थ्रू बाय द FIIs आउटफ्लोज। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से मिड और स्मॉल कैप्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस दिखी।
0: तो ये मानने के भी हमारे पास पर्याप्त कारण है कि भारत की जो मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं, उसका प्रदर्शन निरंतर मजबूत और सतत बना हुआ है, एक स्टेडी बना हुआ है।
1: हाँ, अच्छी बात है, लेकिन उनमें अब हो क्या रहा है अमित जी, कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कई बार ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी हैं, जो मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड के, जो स्मॉल कैप्स के जो फंड्स हैं, तो उनको बाय फोर्स दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में लोग बेट कुछ ज्यादा ही लेने लग पड़े, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है, तो फिर रिस्क भी ज्यादा थोड़े हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत वहां है।
2: और शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है स्मॉल कैप?
1: नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी ठीक नहीं है आज की डेट में। यू नीड टू बी पेशेंट, एज आई सेड अर्लियर, इन मार्केट, इन द मार्केट गेम टुडे, यू नीड टू बी पेशेंट। अगर आपको, अब जैसे अमित जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड का पिछले 2 साल में समस्या रही है, तो आपको 3 साल की बैलेंस शीट दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, लेकिन 2 साल में समस्या है। तो म्यूचुअल फंड के लिए चैलेंज है कि मेरे पे ये विश्वास करे जा रहे हैं, तो मुझे, मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो म्यूचुअल फंड के लिए एक चैलेंज है अपने आप में, यही टेस्टिंग टाइम है सबका।
0: उनको बेहतर प्रदर्शन भी करना है, साथ ही साथ निवेशकों के भरोसे को भी पूरा करना है,
1: पूरा रखना है।
0: उसके बावजूद अगर हमारा बाजार तकरीबन, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, लगभग 75,000 के स्तर के आसपास है, और निफ्टी अगर ये है, तो इसमें कितनी उम्मीदें आपको भी नजर आती हैं, या कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? आने वाला कुछ समय, हमारा त्योहारी सीजन भी है
1: जी, इसमें निफ्टी का देखे तो एक दायरा ऐसा बना हुआ है
0: जी।
1: अभी हम दायरे के लोअर एंड पे हैं, वो तब अगर ये थोड़ी मिडिल ईस्ट में शांति थोड़ी स्थापित हो जाए,
0: वैश्विक स्थिति से अगर स्पार्क नहीं मिलेगा, तो भारतीय बाजारों में तेजी का दौर देखना फिलहाल
1: नहीं, वो 2-3 चीजें चाहिए जो अंग्रेजी बोलते हैं विच मस्ट फॉल इन प्लेस। एक तो ये मिडिल ईस्ट की शांति चाहिए, क्योंकि तेल का भाव बहुत खतरनाक लेवल पे चढ़ रहा है
0: जी।
1: अभी फॉर्चुनेटली थोड़ा आज गिरा है, 100 से तो ऊपर ही रहता है अभी कुछ दिनों में, तो समस्या तो है
0: जी।
1: और इन सब के चलते 2-3 चीजें, और FIIs को वापिस आना पड़ेगा।
0: चलिए,
1: तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें हो, तो फिर मार्केट बढ़ेगी।
2: लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।
0: चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजार पर। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.3% की बढ़त से बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली गिरावट से बंद हुआ।
2: ऑलराइट, बैक होम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी चेयरमैन तोहिन कांता पांडे टुडे सेड द सिक्योरिटीज मार्केट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन एसेट्स लाइफ साइकिल। एड्रेसिंग द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey said Infrastructure requires capital that is large in scale, long-term, and patient in nature. The

0: officials, banks, and a shadow fleet of tankers that keeps Russian energy moving. It also directs Trump to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil or natural gas, with an exception for countries that import less than 15% of Russia's natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports.
1: भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. विविध स्रोतों के माध्यम से बदलते बाजार के साथ चलना जरूरी है. अमरीकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के पारित होने का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले पर आगे के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के महीनों में विभिन्न अमरीकी वार्ताकारों के साथ साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है. द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है. बहुत संक्षेप में इन सब चीजों पे भारत की स्थिति सरकार नजर बनाए हुए है और अपनी अपनी स्थिति को भी मजबूत करने पे लगी हुई है.
2: ये आप जब ये नहीं तो भारत सरकार ने तो बोल दिया ना कि हम तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड हैं और अपनी चॉइस जो है हम अपनी खुद चूज करेंगे.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है. नई दिल्ली की यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा उत्पादन स्थल बनने के लिए सभी कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.
3: इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था. जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे. पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की. कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई.
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि अब नींव रखी जा चुकी है और हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर 2.0 के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
4: So the approach in Semicon 2.0 will be to promote the design companies in a very big way, both the startups as well as the large companies. Large companies would like to get into semiconductor design because the scope is huge now, the opportunities are huge. Startups can bring in innovative solutions which will be liked by the market.
1: प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में जो प्रधानमंत्री की मंशा है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जो हमारी इच्छाएं हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत को अग्रणी बनाया जाए, कितना सहमत और कितना जरूरी है?
2: बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एआई की सारी रेवोल्यूशन है वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पे तो डिपेंड कर रही है. तो पूरी वैल्यू चेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट है, और अगर हमने एआई वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है तो अगर हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.
1: और हाल ही के दिनों में इनकी बहुत तेजी से डिमांड भी बढ़ी है और इसकी दामों में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है.
0: राइट, लुक एट द ऑयल प्राइसेस नाउ. वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट देम, नाउ लेट्स गेट डाउन टू इट. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% डाउन एट $102.17 पर बैरल इन द इंट्राडे ट्रेड एट अ टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट. मीनवाइल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 2.7% लोअर एट $99.69
1: पर बैरल. नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर. घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.3% की गिरावट से 151,849 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.7% के नुकसान से 2,29,642 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. प्रकाश, बहुत संक्षेप में अगर मैं चाहूं, डॉलर की स्थिति को देखते हुए और सोने की स्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है कि अभी डॉलर और सोने का जो समन्वय है वो कितना और किस दिशा में चलता हुआ नजर आएगा?
2: ये इनकी कशमकश जारी रहती है. डॉलर भी एक अपने आप में एसेट्स है, सोना भी एसेट्स है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है. लेकिन अभी सोना जो है एक स्थिरता की तरफ मुझे नजर

श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने

0: कही। श्री वैष्णव ने बताया कि कंपनी ने भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से अलग अलग चिन्ह चुनने और नया पार्टी नाम रखने को कहा है। दोनों गुटों को सुबह तक 3 पसंदीदा नाम और चुनाव चिन्ह बताने होंगे। आयोग ने कहा कि अरूप रॉय और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मॉस्को में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जनरल सेठ ने रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से 20 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावाला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद वे पुणे के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले पुणे महोत्सव में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 मैच में 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 108 और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे

आप सुन रहे हैं निशिगंधा। रात के इस पहर में न जाने कितने घरों में आखिरी कप चाय अभी बाकी होगी। कहीं कोई बंद किताब करके उसे उठाएगा, कहीं कोई दिन भर की थकान के साथ बालकनी में आएगा। किसी घर में दो लोग बिना किसी खास बात के साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे और कहीं कोई अकेला होगा जिसे चाय से ज्यादा किसी आवाज की जरूरत होगी। अजीब है ना, एक ही शहर में रात सबके हिस्से अलग अलग कहानी लिखती है। किसी के लिए ये रात आराम है, किसी के लिए याद और किसी के लिए अगले दिन की तैयारी। और रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत इन सबको एक ही पल के लिए एक ही दुनिया में लेकर आता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

कुछ गीतों की उम्र जो होती है ना, वो हमारी उम्र से भी बहुत लंबी होती है। वे बरसों बाद भी बजें तो कमरे में वही पुराना मौसम उतर आता है। आज रात ऐसा ही कोई गीत सुनते हुए शायद आपको अपना कॉलेज याद आ जाए, या किसी दोस्त की हंसी याद आ जाए, या किसी स्टेशन पर छूटी हुई छोटी सी मुलाकात, या वो रास्ता जिस पर कभी रोज हम चला करते थे साथ साथ। चेहरे बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन गीत अपनी जगह ही खड़ा रहा। जैसे किसी पुराने परिचित ने अचानक भीड़ में आपका नाम पुकार दिया हो और आपने पीछे पलटकर अचानक देखा हो और सामने वही परिचित चेहरा नजर आ जाए। रात के रेडियो की खूबसूरती शायद यही है कि गीत समाप्त हो जाता है, पर उससे जुड़ी हुई यादों का सफर बहुत देर तक हमारे मन के अंदर चलता रहता है। तो सुनते हैं एक ऐसा ही गीत और फिर करेंगे आपसे आगे की बातें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है होली आई रे, आवाज है मुकेश की।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात में देर से घर लौटने वाले जानते हैं कि रात के साथ साथ शहर का चेहरा कितना बदल जाता है। दिन में जिन सड़कों पर भीड़ होती है, वहीं रात में पीली रोशनियां साथ चलती हैं। कहीं चाय की दुकान अब भी खुली होगी, कहीं कोई ऊंघते हुए पहरा दे रहा होगा, किसी टैक्सी में धीमा संगीत बज रहा होगा, कोई अपने घर का दरवाजा खुलते ही सारी थकन बाहर छोड़कर घर के अंदर जाएगा।

घर पहुंचने की वो छोटी सी खुशी शायद दुनिया की सबसे सादी खुशियों में से एक है। एक परिचित कमरा, एक ग्लास पानी और किसी अपने की आवाज, बस इतना ही चाहिए होता है कभी कभी पूरे दिन को मुकम्मल करने के लिए। अगला गीत, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, आवाज है किशोर कुमार की।

अरे वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि इससे थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान

0: की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों पक्षों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से अलग अलग चिन्ह चुनने और नया पार्टी नाम रखने को कहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वो 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event yesterday, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The 3-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment, and develop future-ready talent.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम है बीन का जादू।

अच्छा, अब एक ऐसी बात याद दिलाती हूँ जो हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर हुई होगी। कभी ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी कोई पुरानी अलमारी अचानक खोलते हैं और उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े मिलते हैं हमें, और पता है वो कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, उन कपड़ों में रची बसी होती हैं हमारी सुंदर सुंदर यादें। एक पुराना रुमाल, किसी समारोह का बचा हुआ कोई कार्ड, और जेब में रखा हुआ कोई पेन जो अब चलता नहीं, या फिर जेब में रखा हुआ भूला हुआ कोई कागज। हर चीज के साथ कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई याद जुड़ी होती है। हम सामान संभालते संभालते अपना पूरा दिन संभाल रहे होते हैं, बीता हुआ समय संभाल रहे होते हैं, और फिर एक दिन वही चीज जब हमारे हाथ में आती है तो हम मुस्कुरा देते हैं। न दुख, न शिकायत, बस एक मीठी सी पहचान कि हम कभी ऐसे भी हुआ करते थे। रात ऐसी मुलाकातों के लिए बहुत सुंदर सी जगह बनाती है, बहुत सारा समय देती है जब हम अपनी यादों के जमाने में लौट पाते हैं और बहुत कुछ बीते हुए वक्त के साथ जीने लग जाते हैं। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है कर्ज़।

कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन की जो सबसे प्यारी कहानी होती है, या यूं कहें कि बहुत ढेर सारी छोटी छोटी सुंदर सुंदर कहानियां जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर अचानक से मिल गई कोई मुस्कुराहट, पुस्तकालय में पूछी गई एक छोटी सी बात, रास्ते में किसी अजनबी ने पकड़कर दिया, रास्ते में कि कोई अजनबी मिला और उसने क्या किया कि सफर में आप जा रहे हो, आपको उसने रास्ता दे दिया अचानक से, या फिर किसी अजनबी ने आपको पकड़कर कुछ प्यारी सी कोई बात कह दी हो, या फिर कहीं हम चलते चलते किसी से टकरा गए हो और उस टकराहट के बाद एक छोटी सी प्यारी सी कोई बात जन्म ले ली हो। मुलाकात तो बस 2 ही मिनट की होती है, लेकिन उसका असर बरसों तक हमारे दिलों में पलता रहता है। हम अक्सर बड़ी घटनाओं को याद रखते हैं, जबकि दिल को छूकर गुजरने वाली जो बातें होती हैं वो बहुत मामूली सी बात होती है। यूं कहें तो अक्सर हमारा ध्यान उन बातों पर तब तक नहीं जाता जब तक हम खुद उन बातों से होकर नहीं गुजरते। कितनी मामूली सी होती है एक विनम्र शब्द, एक सच्ची मुस्कुराहट, या अनजान का सहज अपनापन। शायद यही बातें इस दुनिया को रहने लायक बनाती हैं, क्योंकि हर दिन में कहीं ना कहीं कोई अनजान व्यक्ति हमारी कहानी का एक सुंदर सा छोटा सा वाक्य बन जाता है और हमारे दिल में घर कर लेता है। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम है।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बनफूल। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल थिम्फू में भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शंकर ने कहा, भूटान और भारत के बीच विशेष मित्रता को और मजबूत करने के लिए भूटान नरेश का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा। अमरीका ने ईरान के राष्ट्रपति मजूस पेजेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची सहित वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों को अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए वीजा मंजूर किया है। अमरीकी विदेश विभाग के अनुसार ईरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल और जरूरी कर्मचारियों को भी वीजा दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमरीका और ईरान के बीच 6 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से

रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए तीन तीन नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के तीन तीन विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग आवंटित करेगा। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देश भर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मैच में 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 108, संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर एक गेंद में 94 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है दो रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की।

सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। और अब कुछ बातें करते हैं, जब इतनी सारी बातें हमने कर ली तो कुछ बातें रविवार की। कुछ घरों में रविवार आज भी देर तक सोने और साथ खाना खाने का नाम है। सुबह की बनी चाय दोपहर तक चलती है, अखबार आधा पढ़ा हुआ रखा रहता है, रसोई से आती खुशबू सबको धीरे धीरे एक ही जगह पर खींच कर ले आती है। किसी को बाजार जाना है तो किसी को कपड़े धोना है, किसी को बस आराम करना है और किसी को बातों बातों में पुराने किस्से निकालना है। और वही कहानी तीसरी बार भी हंसा देती है। तीसरी क्या, हम तो कहते हैं चौथी पांचवी छठी सातवीं, जितनी बार भी सुनो वो किस्से हर बार आप हंसेंगे। जिंदगी शायद ऐसे ही छोटे छोटे किस्सों से, छोटे छोटे दृश्यों से बनती चली जाती है। उनकी कोई तस्वीर नहीं खींची जाती, मगर बरसों बाद भी जब भी मिले जिंदगी के सुंदर रंग से, ये रंग इतना ही चटक इतना ही खिलता हुआ मिला। अगला गीत फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार।

और आज जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें कि हमारी पुरानी पुरानी यादें निकल कर आ रही हैं, तो ऐसे में वो बात हम कैसे भूल सकते हैं। जरा सोचिए, जब हम घर से कहीं बाहर जा रहे होते थे और स्टेशन हमें छोड़ने के लिए हमारे अपने साथ होते थे, स्टेशन पर विदाई हमेशा थोड़ी जल्दी में होती है। आज भी ट्रेन खड़ी रहती थी और घड़ी आगे बढ़ती रहती थी, और कहने को उस वक्त कितना कुछ बचा रहता था। कोई बार बार वही बात पूछता था, सामान रख लिया, जबकि असली सवाल कुछ और होता था। ट्रेन चलती थी, हाथ हिलते थे और वो चेहरे धीरे धीरे करके पीछे छूटते जाते थे, और फिर आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ता था। कानों में बार बार यही सुनाई देता था, पहुंचकर जरूर बताना, बस चार शब्द, लेकिन उनमें पूरा अपनापन समाया होता था। रिश्ते शायद बड़े वादों से कम और ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से ज्यादा पहचाने जाते थे, और अगर हम कोशिश करें ना, तो हम ये वाले दिन अब भी साथ ला सकते हैं। सुन रहे हैं आप रात सुरमई। अगला गीत फिल्म का नाम है हीर रांझा, आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सफर, आवाज है मुकेश की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात का जो समय होता है ना, रात के समय में शहर अपने दूसरे रूप में जाग रहा होता है। अगर आप इस वक्त सड़क पर निकलेंगे तो शहर आपको बिल्कुल अलग ही नजर आएगा, बिल्कुल नया लगेगा। बंद दुकानों के शटर, दूर तक जाती हुई सड़क और किसी पेड़ के नीचे सोते हुए जानवर और चौराहे पर अब भी जलती कभी लाल और कभी हरी बत्ती। दिन का शोर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन शहर पूरी तरह सोया हुआ भी नहीं रहता। कहीं कोई जाग रहा है तो किसी घर में किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है, किसी ऑफिस में कोई अपनी आखिरी फाइल पूरी कर रहा होता होगा। हर रोशनी के पीछे एक कहानी है, हर जागती आंख के पीछे एक वजह, और हम अपने छोटे से रेडियो के साथ इस तरह की अनगिनत कहानियों के बीच ये रात मिलकर साझा कर रहे हैं। अगला गीत फिल्म का नाम है जवानी दीवानी, आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

और वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है, इससे नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्पापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावाला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग भी आवंटित करेगा।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज से शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे करोगी एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट शिलोंग के से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:11 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ड्यूएट प्रोग्राम जिसे आप और हम कहते हैं हमराही। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कभी रास्ते लंबे हो जाते हैं, कभी मंजिल दूर नजर आती है, मगर जब दिल में किसी अपने का साथ हो तो हर सफर आसान और हर राह हसीन लगती है। किसी का इंतजार हो तो पल पल सदियों सा लगता है, और जब वही हम सफर लौटाए तो जैसे सोनी राहों पर बाहर उतर आती है। तो आइए आज इसी इंतजार, इसी चाहत और इसी मीठी पुकार को एक सदाबहार नगमे में महसूस करते हैं। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत ऊंचे लोक फिल्म से।

कभी कभी मोहब्बत को कहने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, एक करीबी ही काफ़ी होती है। जब किसी ख़ास इंसान का साथ मिल जाए तो जैसे दुनिया की सारी बेचैनियाँ थम सी जाती हैं, दिल को एक सुकून मिलता है और हर धड़कन में प्यार की एक नई कहानी लिख जाती है। वो पल जब दो दिल एक दूसरे के और करीब आते हैं, वक्त जैसे वहीं ठहर जाता है और खामोशी भी मोहब्बत की जुबान बन जाती है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास को संगीत में महसूस करते हैं। फिल्म वक्त का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

आंखों में मोहब्बत हो, होठों पर खामोशी हो और दिल में किसी का नाम, फिर भला ये राज कब तक राज रहेगा। कभी कभी नजरें झुकाकर, कभी मुस्कुराकर, कभी बातों को बदलकर आप चाहे कितना छुपा लें, मगर दिल की धड़कनें तो चुगली कर ही देती हैं। तो चलिए इसी मीठी सी शिकायत और नटखट मोहब्बत के साथ सुनते हैं फिल्म नीला आकाश का ये बेहद खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, शकील बदायूं की तहरीर में ताजमहल सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि इश्क की दास्तान है जो सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे गई। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत जिसे हमने लिया है लीडर फिल्म से, और इस गीत को आप अपनी मखमली आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों 3:36 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और गीतों की। कभी कभी जिंदगी को खुशियों की लंबी फहरिस्त नहीं चाहिए होती। जी बिल्कुल सही बात है कि खुशियों के लिए जिंदगी में बहुत ज़्यादा हमें डिमांड नहीं रखनी चाहिए। बस एक ऐसा हमसफ़र चाहिए होता है जिसकी मौजूदगी से हर पल थोड़ा और जो वक्त है वो खूबसूरत लगने लगे। कहते हैं साथ सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, साथ तो वो एहसास है जो दूर रहकर भी दिल के करीब बना रहे। तो आइए इसी प्यारे एहसास को महसूस करते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म कांच की गुड़िया से। आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की।

दोस्तों, मोहब्बत भी तो एक ऐसा ही राज है जिसे आंखें कह देती हैं, होंठ छुपा लेते हैं और दिल उम्र भर संभाल कर रखता है। कभी किसी की याद को दिल में यूं ही छुपा लीजिए कि ज़माना पूछता रह जाए और दिल बस मुस्कुराता रहे। क्योंकि हर प्यार का इजहार ज़रूरी नहीं होता और कुछ एहसास खामोशी में ही सबसे खूबसूरत लगते हैं। तो आइए इसी खामोश मोहब्बत के नाम सुनते हैं फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, जिसे गाया है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने।

छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिएगी। इस खूबसूरत से गीत को अभी आप सुन रहे थे ममता फिल्म से, आवाज़ें थी हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की। दोस्तों, कभी किसी की एक नज़र दिल की सारी दुनिया ही बदल देती है। धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, लफ्ज ठहर जाते हैं और दिल बस यही कहता है ज़रा रुकिए, पहले इस खूबसूरत एहसास को महसूस तो कर लूँ। इश्क शायद इसी को कहते हैं जहाँ सामने वाला कुछ कहे बिना भी दिल बहुत कुछ समझ लेता है। तो आइए इसी मासूम सी मोहब्बत और मीठी सी बेखुदी में डूबते हैं। फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं का गीत सुनते हैं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

लिए थोड़ा समय बाकी है, इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिए मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ कार्यक्रम हमराही में। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, बस दिल में उतर जाते हैं और फिर हर धड़कन में अपनी जगह बना लेते हैं। किसी को चाहना आसान है, मगर किसी को दिल से चाहना, ये वो एहसास है जिसमें कोई अपना आपकी मुस्कान की बजाय आपकी खामोशी की आवाज़ और आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। तो आइए इसी सच्चे और प्यारे एहसास को महसूस करते हैं फिल्म चांद और सूरज के इस गीत में, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

कहते हैं मोहब्बत भी बड़ी अजीब सी है, लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं मगर एहसास भूलते रहते हैं, और जब हुस्न अदा और संगीत एक साथ मिल जाए तो एक खूबसूरत नगमा जन्म लेता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं फिल्म गुमनाम के इस गीत की, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और शारदा ने।

और चलते चलते बस यही कहेंगे कि कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, उनमें चांदनी खुली होती है, हवाओं में कोई मीठी मीठी सी बात होती है, और साथ हो कोई ख़ास हमसफ़र तो हर पल एक खूबसूरत याद बन जाता है। तो कार्यक्रम के आखिर में आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया फिल्म एन इवनिंग इन पैरिस का ये गीत, और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्पापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग आवंटित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने लद्दाख सरकार के सहयोग से एक महीने का प्रत्यक्ष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम लद्दाख के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12, 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए है। CBSE ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लेह, नुब्रा, जानसर, कारगिल, द्रास, चांगथांग, सांकू, चिकतान और अन्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विद्यालय शामिल हैं। CBSE ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य

कक्षा आधारित सहायता के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी को मजबूत करना है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज से शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे करोगी एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ यादों की मीठी खुशबू और संगीत की प्यारी धुनों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपने कार्यक्रम अरुणिमा में। 4:11:05 हुए हैं और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। तो कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और बस यही कहती हूँ मैं, यानी आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया की, कल चाहे जैसा भी था आज को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है।

जिंदगी में गम आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन हर मुश्किल के सामने रुक जाना ही तो जिंदगी नहीं है। कभी कभी जरूरी होता है कि कुछ देर के लिए परेशानियों को किनारे रखें, चेहरे पर मुस्कान लाएं और खुद से कहें, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले पल को जरूर बेहतर बना सकते हैं।

0: खुश रहना समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें हिम्मत के साथ सामना करने की ताकत जुटाना है। तो आज अपने दिल से कहिए, थोड़ा गम छोड़िए, ज़िंदगी को महसूस कीजिए, क्योंकि हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद भी लेकर आता है।
1: 10 दिन बीत गए बैजू, मैं तो थक गई चलते चलते।
2: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो, मन हारो, धन दौलत हारो, खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
1: बैजू, चरिंदे जागे, परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
2: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आप नहीं थोड़ा सा।

जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कदम कदम पर मुश्किलें मिलती हैं, लेकिन हमारी असली ताकत इस बात में है कि हम उस हालात का सामना कैसे करते हैं। हर परेशानी के बीच अगर हम उम्मीद की एक छोटी सी किरण बचा कर रख लें तो अंधेरा भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए आज अपने दिल से कहिए, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करें, जो बदला जा सकता है उसके लिए कोशिश करें, और जो पल आज मिला है उसे मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि मुस्कान सिर्फ खुशी की निशानी नहीं, कई बार यही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है।

जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, खुद से नजरें चुरा कर जीना कोई रास्ता नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अपनी कमियों से घबराइए मत, अपनी गलतियों से शर्माइए मत, क्योंकि यही अनुभव हमें कल से बेहतर इंसान बनाते हैं। दुनिया क्या कहेगी ये सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही आवाज़ सुनना भूल जाए। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने कदमों पर विश्वास रखिए और पूरे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी छुपकर नहीं, खुलकर हिम्मत से और मुस्कुराकर जीने का नाम है।

दोस्तों, आप इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अरुणिमा मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दूसरों के लिए यानी दूसरों के किए हुए व्यवहार को अपनी खुशी और अपनी पहचान पर कभी हावी मत होने दीजिए। जो बीत गया उससे सीख रखिए, मगर वहीं ठहरिए मत। अपने भीतर इतनी मजबूती रखिए कि कुछ मुश्किलें आएंगी तो आप कह सकेंगे, मैं टूटूंगा नहीं या मैं टूटूंगी नहीं, मैं इससे सीख कर और मजबूत होकर आगे कदम बढ़ाऊंगा।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले सहना मुश्किल लगता है, लेकिन जब कोई अपना पास बैठकर कह दे तुम अकेले नहीं हो, तो वही दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। याद रखिए, मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि हम हर परेशानी अकेले झेले। कभी किसी का हाथ थामना, किसी की बात सुनना और किसी के दर्द में उसके साथ खड़ा होना भी हिम्मत है। और जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं।

एक जिंदगी कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। कुछ पल याद बन जाते हैं, कुछ अनुभव हमें बदल जाते हैं और कुछ अधूरे सपने दिल में रह जाते हैं। लेकिन गुजरा हुआ वक्त सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, वो हमें सिखाता है कि आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आसान सवाल नहीं पूछती। कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां हमें अपनी हिम्मत, अपने धैर्य और अपने फैसलों पर भरोसा रखना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, मुश्किल वक्त हमारी पूरी कहानी नहीं होता, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है, हर ठोकर हमें संभलना सिखाती है, और हर मुश्किल के बाद आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खुल जाता है।

और दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम के अंत में बस हम यही कहेंगे कि इम्तिहान चाहे जितना मुश्किल क्यों ना हो, अपनी कोशिश और अपनी उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हाँ, लेकिन अभी आपको एक गाना ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन मुझे यानी अर्चना विसारे को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्मापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही ये सार्वजनिक उपक्रम के पवनहंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सेट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपने उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने लद्दाख सरकार के सहयोग से 1 महीने का प्रत्यक्ष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लद्दाख के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। CBSE ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लेह, नुब्रा, जांस्कर, कारगिल, द्रास, चांगथांग, सांकू, चिकतान और अन्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विद्यालय शामिल हैं। CBSE ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कक्षा आधारित सहायता के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारियों को मजबूत करना है। एशियाई खेल 2026 में भारत आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हरा दिया है।

5:10 और 57 सेकेंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर, और आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में, मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाय इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म जमीन आसमान से।